0: FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। अब से थोड़ी देर में सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया।

0: है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। आइए अब सुनते हैं चिंतन वंदनवार श्री रामचरितमानस गान और संगीत सरिता, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुस्कान एक ऐसा उपहार है जिसे बिना कुछ खर्च किए भी किसी को खुशी दी जा सकती है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हेलो सहेली कार्यक्रम में संवादन होगा चंचल वर्मा का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 4 बजे पिटारा में सुनिए गीतों भरी कहानी। कहानी है रिश्ते, लेखन है विधि जैन का, संपादन है काजल भद्रगी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। पर संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी, एक दिन का प्यार। लेखन है V.M. आनंद का, निर्देशन है सुदर्शन कुमार का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 9 बजे सुनिए आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता पंकज कपूर पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर है ज्योति गौर का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

दरबारी और धनाश्री में कृतियाँ पेश कर चुकी हूँ, तो लीजिए आज सुनाती हूँ भैरवी राग में एक रचना। उससे पहले महाराजा स्वाति तिरुनाल के बारे में दो चार शब्द और भी कह दूँ। स्वाति तिरुनाल और संत त्यागराजा मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, जो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाते थे, सब समकालीन वाग्यकार थे। स्वाति तिरुनाल तिरुवांकूर प्रांत के महाराजा थे और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने शिष्य नहीं तैयार किए। महाराजा थे तो शिष्य नहीं ले सकते थे शायद, लेकिन उनकी रचनाएं उतनी ही श्रेष्ठ माने जाते हैं जितने त्रिमूर्ति वाग्यकारों का। कहा जाता है कि वे अपनी मातृभाषा मलयालम के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और फारसी में भी बहुत ही निपुण थे। एक पुस्तक है ग्रेट मास्टर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, जिसमें स्वाति तिरुनाल का भी नाम शामिल किया गया है। उनके दक्षिणवासी होते हुए भी उन्होंने उत्तर भारतीय संगीत में काफ़ी रुचि और पांडित्य दिखाई। उत्तर के तीन मशहूर संगीतकार स्वाति तिरुनाल के दरबार में यानी कोर्ट म्यूजिशियन के रूप में जुड़े हुए थे। वे थे ग्वालियर के अलाउद्दीन और लक्ष्मण दास और पंजाब के सुलेमान। यह था सन 1829 से 47 तक की बात। स्वाति तिरुनाल ने शास्त्रीय संगीत के बारे में एक पुस्तक भी लिखी, खास करके मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य के लिए इन्होंने काफ़ी बंदिशें बनाई हैं। हाँ, यह बताना भूल गई कि स्वाति तिरुनाल ने न केवल ध्रुपद बल्कि टप्पा भी कंपोज किए थे, लेकिन ये मिल नहीं रहे हैं आजकल। तो आज आपको सुनाना चाहती हूँ भैरवी राग में एक कृति जो कहरवा ताल में है। एक और बात यहाँ बताना चाहूँगी कि भैरवी जो दक्षिण में गाते हैं वो उत्तर भारतीय भैरवी से एकदम अलग है। कर्नाटक पद्धति में जो भैरवी गाते हैं उसमें काफ़ी ठाट के स्वर लगते हैं। मैं अब तो कृति जो पेश करने जा रही हूँ वह उत्तर भारतीय पद्धति के भैरवी राग में रचित है, तो सुनिए रामचंद्र प्रभु राग भैरवी में।

0: आलाप का ये गीत राग भैरवी पर आधारित था। आवाजें थीं लता मंगेशकर और दिलराज कौर की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग भैरवी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

आप सुन रहे हैं FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। सुबह के 7 बजे हैं और अब समय है हमारे दैनिक सूचनात्मक स्थानीय कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़ का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

0: प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, झालावाड़ के इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की चर्चाओं की ओर। दोस्तों, आज की सुबह बेहद खास है। आज हम चर्चा करेंगे उस रिश्ते के बारे में जो इस दुनिया में हमारी मौजूदगी की वजह है, वो रिश्ता जो बिना किसी शर्त के सिर्फ देना जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे माता पिता की, यानी माता पिता के वैश्विक दिवस की ओर मेरा इशारा है। यूं तो ये दिन 1 जून है, लेकिन माता पिता का वैश्विक दिवस तो हर दिन है। तो आप सभी को पहले तो इस बेहद खूबसूरत दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हर साल ये दिन मनाते तो हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? तो चलिए आज इस खास मौके पर थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। बात है साल 1980 की, जब संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने परिवार से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र का मानना था कि एक बच्चे के संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए उसे परिवार के माहौल में और माता पिता के साय में ही बड़ा होना चाहिए। इसके बाद साल 1993 में UN जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष की घोषणा की। लेकिन माता पिता के निस्वार्थ योगदान को एक अलग और वैश्विक पहचान देने के लिए एक बड़े कदम की जरूरत थी, और वो ऐतिहासिक दिन आया 17 सितंबर 2012 को। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के जरिए आधिकारिक तौर पर हर साल 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस घोषित किया गया। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में अपने माता पिता के प्रति सम्मान और आभार जताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सीधी सी बात है दोस्तों, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर उन लोगों को थैंक यू कहना भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि माता पिता सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देते, बल्कि वे समाज की सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई यानी परिवार की नींव होते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी संस्कृति हो, चाहे मानव हो और चाहे पशु पक्षी, बच्चों के पालन पोषण में माता पिता की जिम्मेदारी, उनका त्याग और उनका प्यार हमेशा एक जैसा होता है। यह दिन उनके इसी निस्वार्थ सेवा भाव को सलाम करने का है। तो साथियों, आज का दिन सिर्फ रेडियो पर इतिहास सुनने का नहीं, आज का दिन एक्शन लेने का भी है। अपने माता पिता के पास अगर आप हैं तो उन्हें शब्दों से ना सही, लेकिन अपने भावों से थैंक यू जरूर कहें। और अगर वो आपसे दूर हैं तो उन्हें फ़ोन मिलाइए, बात कीजिए और उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराइए, उनकी भावनाओं को समझिए। चलते चलते इस चर्चा पर चलते चलते किसी शायर की खूबसूरत लाइन, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, और जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और अब आगे बढ़ते हैं अगली चर्चा की ओर, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद।
3: जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है? यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह ताजा पानी कम करता है, भोजन की सप्लाई में रुकावट डालता है और वायु की क्वालिटी को खराब करता है। इसका असर खासकर गरीब लोगों पर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखा जैसे मौसम अब बार बार हो रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन का बढ़ावा दे सकता है। कुछ क्षेत्रों को थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अधिकतर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक चौंकाने वाली बात है। करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के किनारे पर हैं, और कई तो अगले कुछ दशकों में ही गायब हो सकती हैं। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी

0: आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: साथियों, इस विराम के पहले हमने बात की वैश्विक

साथियों, एक बार फिर से नमस्कार। झालावाड़ में आप सभी का स्वागत। और चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। आज 29 मई है। 29 मई कैलेंडर का ये पन्ना सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि दुनिया के उन जाबाजों को सलाम करने का दिन है जो अपने घर परिवार से दूर अनजान मुल्कों में नीली टोपी पहनकर इंसानी जिंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज के दिन मनाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। दोस्तों, जब भी हम युद्ध की या हिंसा की खबरें सुनते हैं तो मन दहल जाता है। अभी भी जैसे विश्व के हालात बने हुए हैं, एक देश से दूसरे देश की लड़ाई चल रही है, उसमें जो जन सामान्य वो पिस जाता है, बहुत सी जिंदगियां तबाह होती हैं। और सोचिए, उस बारूद के बीच जब ब्लू हेलमेट यानी नीली टोपी और यूएन लिखे सफ़ेद वाहन पहुंचते हैं तो वहां के मासूमों को जीने की एक नई उम्मीद मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नीली टोपी के पीछे का इतिहास क्या है? तो चलिए आज इतिहास के पन्नों से यही जानकारी निकालते हैं। बात 1948 की है, तारीख यही थी 29 मई। अरब और इसराइल के बीच युद्ध विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने पहले शांति मिशन की शुरुआत की थी, जिसे नाम दिया गया था UNTSO यानी यूनाइटेड नेशंस ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो पहला मौका था जब सैनिकों ने किसी देश को जीतने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बंदूक उठाई थी। इसके बाद साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन के शांति रक्षक संघ के प्रस्ताव पर मोहर लगाई और तय किया कि हर साल 29 मई को इन वीर सैनिक

0: घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो दुनिया के किसी कोने में मुस्तैद वो नीली टोपी वाले सैनिक अपने दिल में सम्मान का, अपने दिल में वीरता का भाव लिए बैठे हैं और हमें उनके लिए सम्मान का भाव अपने दिलों में जलाए रखना चाहिए। सलाम है उनके जज्बे को, उनकी शहादत को। और चर्चा के अगले विषय की ओर हम जाएं, ये विषय है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर। आप जानते हैं कि उनकी पुण्यतिथि 29 मई को मनाई जाती है। आज ही के दिन साल 1987 में देश ने अपने एक ऐसे सच्चे सपूत को खोया जिसने महलों की राजनीति छोड़कर देश की तकदीर को खेतों और खलियानों से जोड़ा। जी हाँ, हमने बात की कि आज चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाते थे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक छोटे से गांव में जन्मे चौधरी साहब का एक ही मूल मंत्र था, देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि जमींदारी उन्मूलन कानून लाकर और पटवारी व्यवस्था में सुधार करके गरीब और शोषित किसानों को उनका हक दिलाया। वो एक ऐसे नेता थे जिनकी ईमानदारी की मिसाल विरोधी भी देते थे। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे जरूर, लेकिन उनका दिल हमेशा मिट्टी की खुशबू और हल चलाते किसान के पास ही रहा। हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजकर उनकी इस निस्वार्थ सेवा को सलाम किया। आज भले ही चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी नीतियाँ, उनकी ईमानदारी और किसानों के प्रति उनका समर्पण हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। आइए आज इस विशेष दिन पर हम सब मिलकर देश के अन्नदाता और उनके मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और साथियों, अब हम आगे बढ़ें और आपसे करें जानकारी की बातें। उसके पहले लें एक छोटा सा विराम।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दोस्तों, इस विराम के बाद आगे बढ़ते हैं। नमस्कार झालावाड़ के इस अंक में, और बात करते हैं जानकारी की। आज हम बात कर रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। अब आप कहेंगे कि यह तो 31 मई को मनाया जाता है। हाँ, लेकिन इसकी जागरूकता के लिए हम कई दिन पहले से इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, और हमें इसके बारे में हमेशा बात करते रहने चाहिए। ये विषय ही ऐसा है। मैं हूँ आपका दोस्त और हॉस्ट दीपेश। आज 29 मई है और 31 मई को हम मनाते हैं हमेशा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी हर एक सांस कितनी अनमोल है। आज मैं स्टूडियो में अकेला हूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल से दिल तक पहुंचनी चाहिए। आज इस दिन के पीछे की कहानी और इसके कड़वे सच को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। 5 साल 1987 की है, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने देखा कि तंबाकू की वजह से दुनिया भर में मौतों का आंकड़ा महामारी की तरह बढ़ रहा है। तब जाकर पहली बार 7 अप्रैल 1988 को वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे मनाया गया। लेकिन जल्दी इस मुहिम को

और बड़ा रूप देने के लिए 31 मई की तारीख तय की गई। तब से लेकर आज तक हर साल 31 मई को यह दिन मनाया जाता है ताकि आप और हम जाग सकें। लेकिन दोस्तों, जागना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके दुष्प्रभाव हम सभी के रोंगटे खड़े कर देते हैं। जब कोई इंसान तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या गुटखे का सेवन करता है तो वो सिर्फ निकोटिन नहीं ले रहा होता, उसके शरीर में आर्सेनिक जो जहर है, फॉर्मलाइडेहाइड जो शवों को सुरक्षित रखने के काम आता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जानलेवा गैसें और केमिकल जा रहे होते हैं। इसके परिणाम

0: ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आइए अब आपको सुनवाते हैं ऐतराज फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं उदित नारायण अलका याग्निक की, गीत लिखा समीर ने, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर रखना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: महिलाओं में होने वाले सबसे

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब आपको दें एक जानकारी। आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल FM 103.2 MHz पर सुने स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी और स्वस्थ जीवन शैली के लिए सुझाव। हमारे विशेषज्ञों से सीखें कैसे रहें स्वस्थ और खुशहाल। आपकी सेहत आकाशवाणी झालावाड़ पर हर शुक्रवार सुबह 8:15। आज शुक्रवार है, आज आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी सेहत, जिसका विषय है तंबाकू का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और बचाव के उपाय। हमें फ़ोन कर आप सीधे विशेषज्ञ डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर हैं 232593, झालावाड़ का एसटीडी कोड है 07432। तो जो झालावाड़ से बाहर के श्रोता हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, वो एसटीडी कोड लगाना न भूलें। एक बार फिर से आप सुने, यहाँ के फ़ोन नंबर है 232593 और यहाँ का एसटीडी कोड है 07432। और आइए वापस पढ़ते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की ओर। अब आपको सुनवाते हैं मासूम फिल्म का गीत, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया RD बर्मन ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब आपको दें एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल FM 103.2 MHz पर सुने स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी और स्वस्थ जीवन शैली के लिए सुझाव। हमारे विशेषज्ञ

0: उसे सीखें कैसे रहें स्वस्थ और खुशहाल। आपकी सेहत आकाशवाणी झालावाड़ पर सुने हर शुक्रवार सुबह 8:15 पर। हमें फ़ोन कर आप सीधे विशेषज्ञ डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। आज शुक्रवार है और आज हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 8:15 पर कार्यक्रम आपकी सेहत, जिसका विषय है तंबाकू का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और बचाव के उपाय। आप फ़ोन करके हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 232593 और एसटीडी कोड है 07432। सूचना समाप्त हुई। अब सुनिए समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: भारत सरकार 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।

0: ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
2: प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना

0: सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज ओपिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में पीशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति

0: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है। और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। आइए अब सुनते हैं हमारा साप्ताहिक स्वास्थ्य वर्धक कार्यक्रम आपकी सेहत।

0: आकाशवाणी झालावाड़ सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हमारे आज के साप्ताहिक स्वास्थ्य वर्धक कार्यक्रम आपकी सेहत में बहुत बहुत स्वागत। आज आपके साथ मैं हूं आपका साथी दीपेश, और कार्यक्रम आपकी सेहत में एक और विषय लेकर हम उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। आज का हमारा विषय है तंबाकू का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और बचाव के उपाय। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि समाज में ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं, नौजवान, छोटे बच्चे, यहाँ तक कि साक्षर और निरक्षर एक समान रूप से यहाँ वहाँ किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हुए नजर आते हैं। जबकि लोग जानते भी हैं कि तंबाकू से कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयोग करते हैं। अब जागरूकता की कमी कहें या लत, तंबाकू का सेवन वास्तव में बेहद घातक है। इसलिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है तंबाकू के दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य को नुकसान के संबंध में जागरूकता फैलाना और तंबाकू मुक्त समाज बनाना। तो आज तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हमारे स्टूडियो में हम आपके लिए जैसे हर बार लेकर आते हैं एक विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं आज के विशेषज्ञ मेहमान डॉक्टर मयंक जैन, प्रोफेसर SRG चिकित्सालय झालावाड़। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। कार्यक्रम की शुरुआत हुई एक ऐसे विषय को लेकर जो बहुत कॉमन है, बहुत जनरल लोगों के अंदर दिखाई देता है
1: जी,
0: और हम हमेशा इसको जोड़ते हैं कि तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव, तंबाकू। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि निर्भरता पैदा करने वाली, क्योंकि तंबाकू एक नशे का रूप
1: नशे
0: है,
1: का रूप,
0: तो निर्भरता या लत पैदा करने वाली जो दवाएं हैं या नशीले पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए?
1: सर्वप्रथम झालावाड़ के सभी नागरिकों को बहुत बहुत सुप्रभात। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें है तंबाकू निषेध, और इसके लिए एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल 31 मई को नो टोबैको डे भी सेलिब्रेट करता है। तो आइए पहले जानते हैं कि डिपेंडेंस या निर्भरता मतलब क्या होता है। निर्भरता मतलब होता है ऐसी दवाई या ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल जो हम अगर लेते हैं तो हमें शारीरिक या मानसिक रूप से उनके ऊपर डिपेंड करा देते हैं, निर्भर करा देते हैं, जिनको बार बार लेने की इच्छा होती है या बार बार हमें लेना कंपल्शन हो जाता है। अगर हम नहीं लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट हमारे ऊपर दिखने लगते हैं। इसी में अगर हम बात करें तो कुछ होते हैं जैसे ओपोइड्स हैं, नार्कोटिक ड्रग्स हैं, हालांकि ये पेन रिलीव के लिए दर्द निवारक दवाइयों में काम आता है, पर लोग इसको इलिसिट ड्रग जिसमें मॉर्फिन, कॉडिन, हीरोइन है, ये नशे के रूप में काम में लेते हैं। कुछ दवाइयाँ होती है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन को डिप्रेस करती है, जैसे शराब है, या कुछ दवाइयाँ हैं जिसे हम नींद की दवाइयाँ भी कहते हैं, जिसमें डाइजीपाम वगैरह दवाइयाँ आती हैं। कुछ होते हैं जो हमारे ब्रेन को उद्दीपित कर देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और लोगों में जिसे बोलते हैं ना उद्दंडता पैदा कर देते हैं, लोग उसके बाद कुछ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिसमें कोकेन है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हेलुसिनेट करती है, मतलब हमारे मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति पैदा करती है, मतलब हमें हमारे सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती हैं। हम वहाँ रस्सी को सांप भी समझ सकते हैं और वहाँ व्यक्ति को हम चमगादड़ भी समझ सकते हैं। इसमें आता है LSD जो कॉमन है, जिसे हम आम भाषा में ड्रग्स बोलते हैं कि कोई आदमी ड्रग की सेवन कर रहा है, जिसे हम सफ़ेद पुड़िया वगैरह का नाम भी देते हैं
0: जी।
1: इसके अलावा होते हैं इनहेलेंट एंड सॉल्वेंट। यहाँ मैं विशेष ध्यान लेना चाहूँगा कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो पेंट के थिनर होते हैं, पेट्रोल की टंकी होती है उसको सूंघते हैं, ये भी एक तरह का एडिक्शन है और ये इसके भी दुष्प्रभाव शरीर पर होते हैं। तो जो लोग इसको समझते हैं कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, उन लोगों को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हमारा टॉपिक है, निकोटीन पर बात करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये कॉमनली यूज़ होने वाला पदार्थ है, बाकी की चीज़ें इलिसिट ड्रग्स में आती हैं इसलिए मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, पर ये कॉमनली बहुत आसानी से लीगली अवेलेबल होने वाली चीज़ है। हर दुकान पर आपको बीड़ी तम्बाकू की दुकान, पान की दुकान, परचून की दुकान पर ये सामान मिल जाता है, और ये ना सिर्फ हमारी शारीरिक बल्कि मानसिक निर्भरता भी पैदा करती है, मतलब ये फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी प्रोड्यूस करती है। मतलब अगर आप इसको निरंतर एक समय अंतराल पर नहीं लेते हैं तो ये आपके शरीर में इस तरह के बदलाव पैदा करती है कि आपको इरिटेशन होने लगेगा, आपका काम में मन लगना बंद हो जाएगा, और आप बार बार चाहोगे कि इस चीज़ का सेवन करता जाए। साथ ही जब हम इसका सेवन करते हैं तो इसकी मात्रा धीरे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है
0: जी। हाँ सर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम नॉर्मली भी देख लेते हैं कि कई बार मैंने तो अखबार में भी ये पढ़ा है कि लोग थिनर को एक एडिक्शन के रूप में ले रहे हैं, और पेट्रोल पंप का भी ऐसा ही होता है कि लोग एडिक्ट होते हैं। ये तो कुछ चीज़ें तो मेरी देखी हुई हैं, आंखों देखी। तंबाकू से जुड़ी बीमारियों का बोझ, जिसे अगर हम इंग्लिश में कहें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।

0: बटन ऑफ डिजीज रिलेटेड टू टोबैको। तो तंबाकू से जो जुड़ी बीमारियां हैं वो कौन सी हैं और किस तरह से हमारे ऊपर वो बोझ बन जा रही हैं?
1: सबसे पहले हम बात करते हैं बर्डन की कि भैया किस कितनी मात्रा में लोगों को अफेक्ट कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोबैको हर उस व्यक्ति, मतलब 50% उन लोगों को जो तम्बाकू छोड़ नहीं पाते हैं, उनको किसी न किसी वजह से मार देता है।
0: जी
1: मतलब अगर 100 लोग तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं तो उसमें से निश्चित तौर पर 50 से ज़्यादा व्यक्तियों की डेथ अकेले तम्बाकू की वजह से होगी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो 7 मिलियन लोग कम से कम तंबाकू या उससे संबंधित दवाइयों बीमारियों की वजह से मर जाते हैं, और उसके अंदर 1.6 मिलियन, मतलब 16 लाख लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड हैंड स्मोक की वजह से मरते हैं। मतलब वो डायरेक्टली तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: पर
0: सर,
1: उनके घर वाले, पति, बच्चे या आसपास के पड़ोसी या लोग उसको सेवन कर रहे हैं जिनके संपर्क में वो आते हैं, और उसकी वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है। उसमें से 80% जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं वो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, जिसमें इंडिया भी हमारी डेवलपिंग कंट्री में आता है। और हम बर्डन की बात करें, ये तो था हमारा कि डिसीज़ या डेथ कितनी हो रही है। अगर हम बात करें कि तंबाकू की वजह से जो हेल्थ पे दुष्प्रभाव आते हैं और उसको संभालने के लिए जो हेल्थ स्ट्रक्चर पर खर्चा होता है, जो हेल्थ सर्विसेज पे खर्चा होता है, या व्यक्ति तंबाकू की वजह से जो निष्क्रिय हो जाता है या काम नहीं कर पाता, उसकी वजह से उसको जो लॉस होता है, उसकी अगर हम बात करें तो ये 1.4 ट्रिलियन पर ईयर होता है।
0: बहुत
1: मतलब
0: बड़ा आंकड़ा है,
1: मिलियन बिलियन के बाद ट्रिलियन है।
0: ट्रिलियन जी,
1: अगर हम
0: बहुत
1: बात
0: बड़ा
1: करें तो
0: आंकड़ा है।
1: वर्ल्ड की 1.8% ऑफ GDP ये का खर्चा सिर्फ तंबाकू से होने वाली बीमारियों के ऊपर हो रहा है।
0: बहुत गंभीर समस्या है ये। इसका मुझे लगता है कि जो मतलब ये तो आपने एक लार्ज स्केल पे हमने बात की,
1: बात
0: लेकिन
1: करिए,
0: फैमिली पे भी देखे तो ये एक बड़ा बर्डन है
1: बड़ा
0: जिन
1: बर्डन है।
0: परिवारों में, अगर अच्छी स्थिति भी है, आर्थिक स्थिति, लेकिन अगर इस लत के लोग शिकार हो गए तो परिवारों की स्थितियां भी धीरे धीरे खराब होने लग
1: खराब होने
0: जाती हैं।
1: लगते हैं।
0: सर, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सी जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद।
1: जी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। और अभी हम बात कर रहे थे तंबाकू से जुड़ी बीमारियां और उनके बोझ की जो देश के ऊपर है और परिवारों के ऊपर है। तंबाकू की अगर हम बात करें सर, तो उसमें क्या हानिकारक रसायन या विषैले तत्व होते हैं जिसके कारण स्थिति इस गंभीरता पे आ पहुंचती है?
3: बहुत ही डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, जिसमें इंडिया भी हमारी डेवलपिंग कंट्री में आता है। और हम बर्डन की बात करें, ये तो था हमारा कि डिसीज़ या डेथ कितनी हो रही है। अगर हम बात करें कि तंबाकू की वजह से जो हेल्थ पे दुष्प्रभाव आते हैं और उसको संभालने के लिए जो हेल्थ स्ट्रक्चर पर खर्चा होता है, जो हेल्थ सर्विसेज पे खर्चा होता है, या व्यक्ति तंबाकू की वजह से जो निष्क्रिय हो जाता है या काम नहीं कर पाता उसकी वजह से उसको जो लॉस होता है, उसकी अगर हम बात करें तो ये 1.4 ट्रिलियन पर ईयर होता है।
2: मतलब
3: मिलियन बिलियन के बाद ट्रिलियन है। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की 1.8% ऑफ GDP ये का खर्चा सिर्फ तंबाकू से होने वाली बीमारियों के ऊपर हो रहा है।
2: बहुत गंभीर समस्या है ये। इसका मुझे लगता है कि जो मतलब ये तो आपने एक लार्ज स्केल पे हमने बात की, लेकिन फैमिली पे भी देखे तो ये एक बड़ा बर्डन है। जिन परिवारों में अगर अच्छी स्थिति भी है, आर्थिक स्थिति, लेकिन अगर इस लत के लोग शिकार हो गए तो परिवारों की स्थितियां भी धीरे धीरे खराब होने लग जाती हैं। सर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सी जानकारियाँ मिल रही हैं, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद
3: जी।

0: अच्छा सवाल है दीपेश जी। मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम तंबाकू के अंदर लगभग 7,000 से ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं और उसमें से हजारों ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो शरीर के लिए बहुत ही घातक हैं, और 70 तो ऐसे पदार्थ हैं जो प्रूव कार्सिनोजन, मतलब जिनकी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी, मतलब जो कैंसर करने वाले कारक हैं, ये प्रूव हो चुका है कि 70 ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर कराती हैं।
1: जी
0: अगर हम चाहें कि हम ऐसा एक रसायन बनाएं जिसके अंदर ये सारे केमिकल्स लेकर आ पाएं, तो हम शायद बना भी नहीं पाएंगे। पर नेचुरली तंबाकू के अंदर इतने ज़्यादा केमिकल और रसायन होते हैं। प्राइमरी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे पहली बात जिसको हम सब जानते हैं कि तंबाकू में निकोटीन होता है।
1: निकोटीन जी
0: निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो डायरेक्टली कैंसर तो नहीं कर रहा है,
1: जी
0: पर वही एक कारण है जो डिपेंडेंस या निर्भरता पैदा करता है तंबाकू के प्रति।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सर, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। और अभी हम बात कर रहे थे तंबाकू से जुड़ी बीमारियां और उनके बोझ की, जो देश के ऊपर है और परिवारों के ऊपर है। तंबाकू की अगर हम बात करें सर, तो उसमें क्या हानिकारक रसायन या विषैले तत्व होते हैं जिसके कारण स्थिति इस गंभीरता पे आ पहुंचती है?
3: बहुत ही

0: हम ऐसा एक रसायन बनाएं जिसके अंदर ये सारे केमिकल्स लेकर आ पाएं तो हम शायद बना भी नहीं पाएंगे, पर नेचुरली तंबाकू के अंदर इतने ज़्यादा केमिकल और रसायन होते हैं। प्राइमरी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे पहली बात जिसको हम सब जानते हैं कि तंबाकू में निकोटीन होता है।
1: निकोटीन जी
0: निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो डायरेक्टली कैंसर तो नहीं कर रहा है,
1: जी,
0: पर वही एक कारण है जो डिपेंडेंस या निर्भरता पैदा करता है तंबाकू के प्रति।
1: तो बीमार है जो पी रहा है और जो उसके आसपास है, और उसमें भी बड़ी समस्या मुझे लगती है सर, सोसाइटी में जब बाहर है तब तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन जो घर के अंदर स्मोक कर रहे हैं उस परिवार की तो स्थिति बहुत खराब रहती है जहाँ स्मोक्ड रहता है। तंबाकू की हम बात कर रहे हैं सर, तो अभी आपने बताया इतने सारे केमिकल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो तंबाकू से उत्पन्न होने की संभावना है? एक आपने बताया कैंसर, और जो है
0: दीपेश जी, अगर आज हम तंबाकू से होने वाली सारी बीमारियों को लिस्ट अगर मैं गिनाना भी शुरू करूं
1: जी
0: तो आज का पोस्टकार्ड खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट सप्ताह का हमारा फ्राइडे भी इसमें खत्म हो जाएगा, और उसके बाद भी शायद इसकी लिस्ट खत्म ना हो पाए।
1: जी
0: ये इतनी बीमारियों के साथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। पर हम कुछ उन बीमारियों के नाम बता दें जिनसे आम आदमी जिस जिस बीमारी को आम आदमी जानता है, जिस बीमारी से आम आदमी डरता है कि हाँ ये नहीं होनी चाहिए।
1: जी
0: तो हम सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की बीमारियाँ, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज जिसे बोलते हैं, हार्ट या दिल की संबंधी बीमारियाँ। यहाँ इसमें हार्ट अटैक आना
1: जी
0: बहुत आराम से सब समझते हैं। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो नसें होती हैं जो हमारे हार्ट को या हमारे शरीर को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसके अंदर ये पदार्थ ऐसा कुछ जमाना शुरू कर देता है कि उसके अंदर जाने की जो पास होने की क्षमता है, नैरोइंग जिसे हम बोलते हैं, हो जाती है और ब्लड पास होने की क्षमता कम हो जाती है। और जब कभी ऐसा होता है, और जब ये नैरोइंग ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब पक्षाघात या पैरालिसिस, जिसमें ब्रेन के ऊपर ही अफेक्ट आता है, क्योंकि ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है और जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे जो नलियाँ होती है उसमें थक्के जमाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ना, और बहुत ही एक खास चीज़ जो लोग इससे एसोशिएट कर ही नहीं पाते, पेरीफेरल आर्टरी डिसीज होती है, जिसमें जो हमारी पेरीफेरी है, उंगलियों के टिप है, पैरों के टिप है, या जो हमारे एंड ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो शरीर के अंग मरना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैंग्रीन होना, और शरीर वो अंग काले पड़ जाना, और कई बार उनकी वजह से उनको एम्पुटेशन मतलब उसे काट कर अलग करना पड़ता है, ये स्थिति भी हो जाती है। ये तो सिर्फ हार्ट की बीमारी है। अभी आगे हम सुनते हैं रेस्पिरेटरी डिसीजेस, सांस से संबंधित बीमारियां, इसमें
1: जी
0: लंग कैंसर सबसे कॉमन चीज़ है। इसके अलावा हम बात करें तो COPD जिसे बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ आने लगती है। इसके
1: जी
0: अलावा एम्फाइसेमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीवियर अस्थमाटिक, सीवियर अस्थमाटिक मतलब होते हैं जिन लोगों को अस्थमा होती है वो जरा से भी इस तरह के धूम्रपान या इस तरह के संपर्क में आते हैं तो उनको अचानक से अस्थमा का अटैक आता है, और अटैक भी नॉर्मल नहीं आता, इतना सीवियर आता है कि कई बार उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जिसमें मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं भी अस्थमेटिक हूँ, मैं भी जब ऐसे लोगों के संपर्क में आता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार कैसे ये आदमी सिगरेट पीना बंद कर दे।
1: सर, चर्चाएं बड़ी अच्छी सी हैं, एक कॉल हमारे
0: जी
1: पास आ रहा है तो
0: जी
1: हम जी। हेलो
2: हेलो सर,
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं कोटला से हरि प्रसाद पाटीदार बोल रहा हूँ।
1: हरि प्रसाद पाटीदार जी, सवाल पूछिए हमारे डॉक्टर साहब से।
2: सर मैं कह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है,
1: जी धन्यवाद।
2: और जो भी लोग धूम्रपान करते हैं ना उन सबसे मैं लड़ता रहता हूँ,
1: जी
2: पर सर ये मानते ही नहीं।
1: बहुत साधुवाद आपको इस पहल के लिए।
2: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर, ये इसको जारी रखे तो अच्छा है।
1: हाँ, ये हमारी कोशिशें हमेशा रहती है कि जितने भी अच्छे कार्यक्रम हैं हम उन सबको जारी रखें, और देखिए ये आपकी सेहत सालों से चलता कार्यक्रम है और ये अभी लगातार चल रहा है। क्या आपका कोई सवाल है इस विषय को लेकर?
2: सर मैं यू यू जानना चाहता हूँ
1: जी,
2: धूम्रपान से कैंसर के अलावा और भी कोई हो सकता है?
1: ये सर अभी इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो अभी सर हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं, वो इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो आप सुने अभी वो और आगे जानकारी देंगे हमें।
2: हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद। श्रोता का फोन भी इसी विषय पर है सर। जी
0: चलिए, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसीज के बाद में हम बात करें जो फ्रिक्वेंट लंग इन्फेक्शन, मतलब लंग से फेफड़ों से संबंधित बीमारियां बार बार होना है, ऐसे लोगों को टीबी भी बहुत जल्दी हो जाती है,
1: जी
0: ऐसे लोगों को दूसरी जो सांस की बीमारियां होती है निमोनिया वगैरह भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब थर्ड अगर हम बात करें कि कैंसर, तो हमने बोला है कि लगभग 20 तरह के कैंसर और सब कैंसर इससे होते हैं, ये तो मेजर कैंसर है, इसके अलावा ये बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें कि जो कैंसर डेथ होती है उसमें 25% डेथ टोबैको से रिलेटेड कैंसर की वजह से हो रही है, और अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो हर 10 व्यक्ति जिनको लंग कैंसर है उसमें से 9 का कारण टोबैको स्मोकिंग या च्यूइंग है।
1: जी

0: इसके अलावा मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, हमारी एक सा जो हमारी खाने की नली होती है जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं, खाने का थैला जिसे हम आमाशय या
1: जी
0: स्टमक बोलते हैं, इसके अलावा पेनक्रियास का कैंसर, ब्लैडर मतलब हमारा जो पेशाब की थैली होती है, किडनी
1: जी
0: का कैंसर और ब्लड संबंधी कैंसर, ये कुछ महत्वपूर्ण या मेन कॉमन कैंसर्स हैं जो इसकी वजह से होते हैं। इसके अलावा इसकी लिस्ट बहुत लंबी है।
1: जी सर
0: अब हम बात करें रिप्रोडक्टिव हैजार्ड्स, मतलब क्या इसका असर हमारे रिप्रोडक्शन पे या जनन क्षमता पर भी पड़ता है। तो हाँ, ना सिर्फ आदमी बल्कि महिला के प्रजनन क्षमता के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। साथ ही अगर हम मेल की बात करें तो लॉस ऑफ लिबिडो मतलब नपुंसकता आना
1: जी
0: या क्षमता में कमी आना,
1: प्रजनन
0: ये
1: क्षमता में
0: प्रजनन
1: कमी
0: क्षमता
1: आना।
0: में कमी आना ये
1: जी
0: खास होता है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के समय पर या पहले स्मोकिंग करती है उन लोगों के बच्चे अधूरे गिर सकते हैं, वो बच्चे मरे हुए पैदा हो सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि वैसो कॉन्स्ट्रक्शन कराता है तो ये ब्लड सप्लाई कम करा देता है बच्चे की, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती।
1: जी
0: कई बार प्री मेच्योर मतलब

0: और साथ में हमारा होता है इम्यून सिस्टम, जो सभी रोग के
1: रोग
0: प्रति लड़
1: प्रतिरोधक
0: रहा है
1: क्षमता। हाँ
0: वो भी कमजोर पड़ना शुरू होता है। ये कुछ मेन बीमारियां हैं जिसके बारे में मेंशन कर रहा हूँ। मैंने जैसा बताया कि इतनी बीमारियां इसके साथ एसोसिएटेड
1: जी
0: हैं
1: सर।
0: कि हम शायद पोस्ट का खत्म भी हो जाएगा तो भी लिस्ट खत्म नहीं हो पाएगी।
1: सर ये एक बात मैंने कॉमनली देखी है, लोग जर्दा खाते हैं और लोग गुटखे का प्रयोग करते हैं, जो दोनों ही तंबाकू के रूप हैं। लोग कहते हैं कि जर्दे से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना गुटखे से पड़ता है, क्या ये डिफरेंस सही है?
0: देखिए कुछ चीज़ें, दोनों चीज़ों में बताता हूँ, गुटखा और तंबाकू, बीड़ी सिगरेट या हम फिल्टर सिगरेट,
1: जी
0: सभी के अंदर केमिकल सेम है, सभी के अंदर टोबैको। हमने ये बात नहीं करी है कि टोबैको के अंदर क्या मिक्स किया जा रहा है, हम ये बात करें कि टोबैको के अंदर ही 7,000 से ज़्यादा केमिकल हैं।
1: है जी।
0: तो हम चाहे कान इस हाथ से सीधे पकड़ें या कान हम उल्टे हाथ से पकड़ें, हम खा तंबाकू ही रहे हैं, चाहे वो हम चबा रहे हैं, चाहे हम वो स्मोकिंग के रूप में ले रहे हैं, चाहे हम उसको नसवार की तरह सूंघ रहे हैं, या हम किसी और तब प्रोडक्ट के रूप में को काम में ले रहे हैं, पर ये है तंबाकू ही। तो मेन कोर्स तो तंबाकू जो है वो वहीं के वहीं पर है अपनी जगह पर, तो वो बीमारियां भी उतनी करेगा, नुकसान भी उतनी करेगा। और ये सिर्फ मन को बहलाने वाली बातें हैं कि हम
1: गुटखा नहीं खाते,
0: गुटखा नहीं
1: जर्दा
0: खाते,
1: खाते
0: हम जर्दा खाते हैं, या हम बीड़ी नहीं पी रहे,
1: जी
0: हम फिल्टर सिगरेट पी रहे हैं, हम सिगरेट नहीं पी के फिल्टर सिगरेट पीना चाह रहे हैं, ये सब मिथ है हमारे इसमें।
1: जी सर, अभी आपने ये इसके बारे में बात की भी फिल्टर सिगरेट के बारे में, तो जो ई सिगरेट या वैपिंग तंबाकू है, ये क्या कम हानिकारक है?
0: देखिए पहले मैं बताऊं कि हीटेड टोबैको प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं ई सिगरेट के नाम से आती है, दो तरह की होती है। एक जो होती है वो जो निकोटीन डिलीवर सिस्टम होता है जिसको
1: जी
0: एंड्स बोलते हैं हम, एक नॉन निकोटीन डिलीवरी सिस्टम होता है, एनएंड्स के नाम से आती हैं। इसमें तंबाकू नहीं होता है नो डाउट, पर
1: जी
0: इसमें निकोटीन होता है।
1: अच्छा।
0: अब निकोटीन की जैसा मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई है कि डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, पहली चीज़। हमारे दूसरे डिसीजेस के अंदर हमारी ये मदद करता है या उसका कारण है, ये कैंसर नहीं करा रहा, पर बाकी सारी डिसीजेज के साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होता है। साथ ही जब हम किसी भी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि निकोटीन क्या करा रहा है, हमारा डिपेंडेंस या निर्भरता पैदा कर रहा है, तो ये भी क्या करती है, निर्भरता पैदा करती है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इसके साइड इफेक्ट कुछ
1: हद
0: कम
1: तक।
0: भी हो, पर फिर भी ये जिस मात्रा में हम ले रहे हैं, जैसे मैं आपको सिंपल शब्द में बोला बोला जाए कि जहर कम मात्रा में लिया जाए या अधिक मात्रा में लिया जाए,
1: हाँ काम तो
0: दोनों का
1: बराबर
0: रिजल्ट
1: करेगा
0: बराबर है।
1: जी।
0: साइनाइड को हम कम मात्रा में चखें या अधिक मात्रा में चखें, दोनों का एल रिजल्ट मौत ही है।
1: मौत ही है जी।
0: इसी तरह से इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई सिगरेट को ईयर्स बैक 5-6 साल, शायद 2019 के आसपास, 2017 या 2019 के आसपास बैन कर दिया है। ई सिगरेट ना तो आप कमर्शियली खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो, ना यूज़ कर सकते हो।
1: सर हम कार्यक्रम में फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद।
2: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, अब बचाव संभव है।
3: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
2: सही समय पर अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
3: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क किया जा रहा है।
2: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
3: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।

0: सकते हो, ना बेच सकते हो, ना यूज़ कर सकते हो।
1: जी सर, हम कार्यक्रम में फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद।
2: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, अब बचाव संभव है।
3: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
2: सही समय पर अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
3: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क किया जा रहा है।
2: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
3: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
4: सर, ये अपने जो मंजन करते हैं ना लोग, ये भेंट के आधा घंटे में,
0: जी जी जी,
4: है ना सर, तो ये सभी सर खतरा है इससे भी?
0: हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया चौरसिया जी, क्योंकि हम शायद इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाए थे। जो मंजन वो कर रहे हैं, जैसे लाल मंजन या जिसमें टोबैको रहता है, तंबाकू रहता है, उसका भी सेम काम होता है। हम तंबाकू खाते तब क्या करते हैं, हम तंबाकू के

0: ये मतलब कुछ दिन खाई जा सकती है, इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगी और बच्चे भी ज़्यादा स्वस्थ होंगे।
1: सर यही प्राइस की बात करता हूँ आपसे, आपने जो बोला है कि हमारा आम एप्पल सेब जो सबसे महंगे आते हैं वो भी 200 रुपये किलो तक मिल जाते हैं।
0: बस सर, हाँ ये लिमिट
1: हम
0: है।
1: जब तंबाकू की बात करें तो वो 10 रुपये के पाउच में हार्डली कुछ ग्राम तंबाकू होता है, मतलब उसकी अगर कॉस्ट बात करें तो कोई भी तंबाकू का प्रोडक्ट 2-3 हज़ार रुपये किलो से कम का नहीं मिलता।
0: बिल्कुल सर, मैथमेटिकली तो बिल्कुल सही
1: सही
0: बात है
1: बात
0: ये
1: है,
0: कि वो प्राइस तो इतनी हो रही
1: इतनी
0: है।
1: ज़्यादा है उसकी।
0: जी सर, हम एक छोटा सा विराम और लेंगे, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सर, इस विराम के पहले मेरे दिमाग में ये आया कि अभी हम जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO वो इस पे एक मुहिम चलाए हुए हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल डेथ है एक तरह से इस तंबाकू के कारण, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026, विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम क्या है?
3: जी, पहले मैं बताना चाहूँगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किन चीज़ों के ऊपर डे सेलिब्रेट करता है।
2: जी,
3: ये सिर्फ

0: परसेंट पैकेट के ऊपर ये होना चाहिए। तो ये सारी पॉलिसीज स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही कि नहीं हो रही ये देखना है।
1: जी
0: तीसरा उनको देखना है कि रिड्यूस डिमांड, कि डिमांड को हम कैसे कम करें। डिमांड दो तरह से कम हो सकती है, पहले कि नए लोग जुड़े ना, जो हम अवेयरनेस क्रिएट करके कर सकते हैं, और दूसरा है कि जो लोग ऑलरेडी तम्बाकू का सेवन करना शुरू कर चुके हैं उनको ऐसे लोगों के संपर्क में लेकर आएँ, ये ऐसी गतिविधियों के संपर्क में लेकर आएँ कि वो तम्बाकू छोड़ दें या किसी किसी तरीके से वो तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रयासरत हो जाए। हमेशा आप देखिए, एक सिंपल एग्जांपल है, होली हम खेलते हैं, होली पे अगर हमें जब तक रंग नहीं लगा तब तक तो हम नहीं, नहीं होली नहीं खेलना, होली नहीं खेलना। अगर हमें
1: हाँ
0: रंग लग गया
1: जी,
0: तो हमें मोहल्ले भर को रंग लगाना होता है।
1: हाँ बिल्कुल
0: वैसे ही टोबेको को है कि जो व्यक्ति टोबेको
1: नहीं
0: छोड़
1: खाता।
0: चुका है, जिसने तम्बाकू छोड़ा है, अब उसको आदत हो जाती है कि नहीं मुझे अपने बाकी साथी संगियों को, परिवारजनों को टोबेको की लत छुड़वाना है। देखो इससे बहुत अच्छा रिलीफ फील होता है, और
1: जी
0: वाकई में तम्बाकू छोड़ने के बाद में व्यक्ति को बहुत अच्छा फील होता है। तो इस तरह की कैंपेन्स करते हैं। साथ ही मैं अगर बात करूँ कि वर्ल्ड नो टोबेको डे पे एक अवार्ड घोषित की जाती है, अवार्ड देती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके 6 रीजन्स हैं।
1: जी
0: तो हमारा इंडिया साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर आता है,
1: जी
0: और हमारे लिए प्राउड की बात है कि इस बार जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर 2 अवार्ड हैं वो इंडिया के नाम है, जिसमें से एक अवार्ड राजस्थान के नाम पे है। ये किनको देते हैं? WHO ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, और ऐसे व्यक्ति जो तम्बाकू रोधन के अंदर या तम्बाकू निषेध के अंदर अपने विशेष प्रयास करते हैं
1: जी
0: या अपनी भूमिका निभाते हैं जिनकी वजह से मेजर इफेक्ट आते हैं, उन लोगों को दिए जाते हैं। तो इस बार हमारे जो प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, डिपार्टमेंट है जयपुर, उनको राजस्थान के अंदर मिल रहा है।
1: जी
0: और ICMR की एक बॉडी है जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, जो कैंसर के ऊपर ही काम करती है, मेनली टोबेको पे काम करती है, उसको ये दिया जा रहा है। तो 6 में से 2 अवार्ड राजस्थान इंडिया के पास है, और इनमें से भी एक अवार्ड हमारे
1: राजस्थान के
0: राजस्थान के
1: पास
0: पास है। तो हमारे लिए बड़ी प्राउड वाली बात है।
1: जी। सर मेरा एक सवाल, आपकी बातों से मेरे मन में एक बात आई। आपने कहा कि जब हम तंबाकू छोड़ देते हैं तो हमको बड़ा रिलीफ सा फील होता है, बड़ा अच्छा सा लगता है।
0: जी
1: शरीर में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तंबाकू जब हम खा रहे हैं तब हमको खाते समय क्या महसूस होता है कि हमें किक आती है, जो मैंने आपको बताया किक
1: जी
0: वर्ड यूज़ करते हैं हम।
1: सर, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे बाद में लूंगा।
0: जी
1: एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो।

0: जानना चाहते होंगे और हम भी जानना चाहते हैं, सोसाइटी के हम सभी सदस्य हैं, धूम्रपान या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति इसका सेवन कैसे छोड़ सकता है, उसे क्या कोशिशें करनी होंगी?
1: जी, हम बात करें कि तंबाकू छोड़ना, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि तंबाकू में जब इतने सारे केमिकल्स हैं और इतना ज़्यादा डिपेंडेंस प्रोड्यूस कर रहा है, इतना एक गंभीर राक्षस हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो जब भगवान राम भी रावण से लड़ने गए तो उन्हें भी बहुत सारे लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़ी है। मतलब उनमें हनुमान जी भी थे, सुग्रीव भी थे, और भी सारे लोग उनके साथ मिलकर उन्हें लड़ाई लड़ी है। उसी तरह से एक सिंगल स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम करेंगे तब हम तंबाकू छोड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है, पर अगर हम मल्टीपल चीज़ों के ऊपर साथ में काम करें तो हमारे लिए तंबाकू छोड़ना बहुत आसान होता है। जो भी व्यक्ति तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जानता है, लगभग 60% लोग ऐसे होते हैं, बाकी 40% लोगों को तो ये भी पता नहीं कि वो तंबाकू जो सेवन कर रहे हैं उसका कोई दुष्प्रभाव शरीर पे हो रहा है या नहीं हो रहा है,
0: बिल्कुल
1: पर 60% जो लोग जानते हैं वो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, और सिर्फ 30% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे चीज़ों के संपर्क में आ पाते हैं जो उन्हें तंबाकू छोड़ने में मदद कर पाए।
0: जी।
1: दूसरी चीज़, तंबाकू अगर हम सिंगल ब्रीफिंग मतलब एक बार किसी आदमी को समझाएंगे तो उसके छोड़ने के चांसेस सिर्फ 30% है, वहीं अगर हम मल्टीपल टाइम लगातार बार बार उसको इम्पैक्ट करें, वो एक कहावत है ना, रसरी आवत जाते सिल पर
0: सिल
1: परत
0: पर परत
1: निशान,
0: निशान
1: अगर
0: जी।
1: बार बार हम उसको हिट करते हैं, बार बार हम उसके बारे में उसे बताते हैं, तो उसके छोड़ने के चांसेस 84% हो जाते हैं, मतलब कई गुना बढ़ जाते हैं। अब यहाँ एक विशेष चीज़ और ध्यान देना बताना चाहूँगा कि तंबाकू छोड़ना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना छोड़े रखना है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि तंबाकू स्टार्ट कैसे हुआ है, पीयर प्रेशर की वजह से हुआ है, या हमारे आसपास जो हमारे रोल मॉडल है, घर में पिताजी पीते हैं,
0: पीते
1: ताऊ जी
0: हैं
1: पीते हैं, लोग पीते हैं, हमारे जियाजी पी रहे हैं, या कोई और पी रहा है जिसको हम
0: हाँ
1: रोल मॉडल मानते हैं और हम भी उसके धीरे धीरे शुरू करते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर जब हम गाँव की बात करें तो व्यक्ति बच्चा पहला तंबाकू का सेवन, चाहे वो चबाने वाला हो चाहे स्मोकिंग वाला हो, वो घर के ही किसी सदस्य से लेकर या चोरी छुपे उसका सेवन स्टार्ट करता है और धीरे धीरे
0: बिल्कुल
1: उसकी लत में परिवर्तित हो जाती
0: जी।
1: है। हाँ, यही हम बात करते हैं, हम कैसे छोड़ते हैं, इसके अंदर हमारा आता है सबसे पहले कि व्यक्ति खुद क्या कर सकता है। तो खुद क्या करेगा, इसमें हम बात करते हैं 4 Ds की बात करते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअली बात है, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक्निकल बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, व्यक्ति समझ पाए कि किसी भी चीज़ की जो अर्ज होती है या हमारी जो क्रेविंग होती है, हमारी एकदम लेने की इच्छा होती है, वो लगभग 3 से 5 मिनट या 10 मिनट तक रहती है। तो अगर हम इस चीज़ को डिले कर पाएँ, पहला डी है डिले, डिले मतलब जब भी
0: देरी करना।
1: सिगरेट पीने की इच्छा हो तो एटलीस्ट 10 मिनट अपने आप को इंतज़ार कराएं और 10 मिनट के बाद ही सिगरेट का सेवन करें, और हो सकता है कि इन 10 मिनट में जो आपकी क्रेविंग हो रही है, जो आपको सिगरेट पीने की प्रबल इच्छा हो रही है, वो शायद ख़त्म हो जाए। इसके अलावा सेकंड डी आता है डीप ब्रीथ, गहरी गहरी सांस लेना ना सिर्फ इसकी बल्कि काफ़ी बीमारियों में हमारी हेल्प करती है, हमारे स्ट्रेस को रिलीव करती है। तो हमें क्या करना है, नाक से लंबी लंबी सांस लेनी है और मुंह खोल के सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट भी होता है, हमारा मन जो हमारी एनजाइटी है, हमारा स्ट्रेस रिलीव भी होता है, तो ये हमें सिगरेट को छोड़ने में हेल्प भी करता है। तीसरा होता है ड्रिंक वाटर, तीसरा डी है ड्रिंक वाटर, मतलब सिप सिप करके पानी पिए।
0: जी।
1: यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हमारा हाथ का और मुँह का एंगेजमेंट हो जाए, तो हम धीरे धीरे करके जब पानी पीते हैं तो हमारे मुँह में हमको लगता है कि हाँ हमारे मुँह में कुछ चल रहा है, कुछ है, हमारे हाथ भी एंगेज हो जाते हैं, तो हम और दूसरा जब पानी हम पीते हैं तो ये जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक चीज़ें होती है बॉडी के अंदर, वो भी धीरे धीरे क्या होती है, वॉश आउट होने लगती है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगती है।
0: जी।
1: चौथा डी है डिस्ट्रैक्ट, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है ऐसी चीज़ों में अपना ध्यान भटकाना कि हमें सिगरेट की याद ही ना आ पाए। तो हमें कोई भी जो हमारी हॉबी वाली चीज़ है जिसमें हम बहुत मन लगता है, जैसे कोई लोग खेलकूद अच्छा करते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग या आर्ट करते हैं, या कुछ लोग दोस्तों से बात करना पसंद करते हैं, तो कुछ भी, जो भी आप अपने दोस्त से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए, परिवार वालों से बात करना शुरू कीजिए, तो ये जो ये चीज़ें जब मिलेंगी तो धीरे धीरे जो हमारा तोबे को लेने का जो गैप है, जो पहले 1 घंटा 2 घंटा था, वो धीरे धीरे बढ़ के 5 घंटे 6 घंटे होगा, नंबर ऑफ़ सिगरेट्स या नंबर ऑफ टोबैको जो हम च्यूइंग कर रहे हैं वो हमारी कम हो जाएंगी, और जिसकी वजह से हम हमारा जो लेने का फ्रिक्वेंसी है वो कम होने लगेगी और हम
0: जी सर
1: छोड़ने में बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी चीज़ है, हमने बोला कि कंबाइंड हमें काम करना पड़ेगा, तो दूसरा है हमारा है मेडिकल थेरेपी। मेडिकल थेरेपी में क्या होता है, 2 तरह की चीज़ें अवेलेबल होती है, एक होती है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। निकोटीन रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हमने बताया कि जो डिपेंडेंस क्रिएट कर रहा है वो निकोटीन है, और निकोटीन जब हमारे शरीर में जा रहा है वही डिपेंडेंस क्रिएट कर रहा है, तो हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। उसके अंदर जैसे च्युइंगम है, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो निकोटीन गम्स आती हैं, वो आप चबाते हैं तो आपको सिगरेट पीने की या तंबाकू खाने की
0: याद
1: इच्छा
0: कम आती
1: नहीं
0: है,
1: आती,
0: लत
1: याद कम
0: लत
1: आती है,
0: रुक
1: तो वो
0: जाती
1: कर
0: है।
1: सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिंस होती हैं, हालांकि मैं वो नाम यहाँ इस पॉडकास्ट में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो डॉक्टर की सलाह के साथ में ही ली जानी चाहिए।
0: जी
1: उनके थ्रू वो क्या करते हैं, वो ब्रेन पे ऐसा इफेक्ट डालते हैं कि जो क्रेविंग है वो होना बंद हो जाती है, या जो विड्रोवल सिम्टम्स हैं कि नहीं पीने की वजह से जो हमें इरिटेशन जो होता है उनको सप्रेस कर देते हैं, तो छोड़ने में

0: मदद मिलती है। तीसरी चीज़ हमारी है स्ट्रक्चरल क्विटिंग प्लान, इसको हम स्टार्ट के नाम से वो जानते हैं। फर्स्ट पहले तो एक डेट सेट कीजिए या टाइम सेट कीजिए जब हम कब हम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जब तक निश्चित हर चीज़ का मुहूर्त निकलता है, हम हर चीज़ का बोलते हैं कि मुहूर्त निकालोगे क्या, लिटरली इसका मुहूर्त निकालिए। दूसरा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बोलिए कि मैं अब तम्बाकू छोड़ना चाह रहा हूँ, ताकि वो आपके लिए एक पॉजिटिव एन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए। तीसरा हमारा है ए, एंटिसिपेट चैलेंज। वो ऐसी चीज़ों को याद करिए जिनकी जिनमें आपको सिगरेट पीने की आवश्यकता महसूस होती है। कई लोगों को स्ट्रेस की वजह से, कई लोग सोशल खत्म होने वाले सोशल गैदरिंग की वजह से होती है। इसके अलावा होता है रिमूव टोबेको प्रोडक्ट, अपने घर से जितने भी टोबेको प्रोडक्ट है सबको हटा दीजिए, कार से, ऑफिस से, घर से, ये सारे, क्योंकि ये चीज़ आपको जब याद दिलाएंगी तो आपको डेफिनेटली क्रेविंग होगी, इनको हटा देना चाहिए। और लास्ट है टॉक टू योर डॉक्टर, तो ये सलाह आप लीजिए ताकि हम डॉक्टर से बात कर पाएँ और टॉपिक को छोड़ा पाएँ।
1: सर इतना अच्छा टॉपिक, इतनी अच्छी जानकारी, आपसे बात करके मन तो कर रहा है इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते रहें, पॉडकास्ट को हम आगे ले जाएं, लेकिन चूंकि समय अब समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर, और सबसे उम्मीद करूंगा कि जो लोग तम्बाकू नहीं सेवन करते हैं वो ना करें, और जो करते हैं वो इसे आज ही छोड़ने की कोशिश करें।
1: जी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी सेहत, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 MHz पर। अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है, और इसके लिए एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: श्री शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। वहीं 2036 के ओलंपिक के लिए आधिकारिक बोली भी पेश की जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहे।
4: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी, और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
2: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास

स्वास्थ्य योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान महिलाओं के नाम पर और संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 93 खनन लीज रद्द करने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा की क्रियान्विति में 676 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी इस मंजूरी के तहत 686 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नागौर और पाली सहित 33 से अधिक जिले लाभान्वित होंगे। इन जिलों में 77 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के गांवों तक भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए अब ई वाहन खरीदेगी। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री और पाली जिला प्रभारी झावर सिंह खर्रा ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया संकट

इक्के पार दर्ज हुआ। 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। करौली, दौसा, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर

0: 41.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री रहा, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अलवर में देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में भी तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से होने से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी धराशायी हुए। धौलपुर में कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने के आसार जताए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल FM 103.2 MHz पर। आइए अब चलें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ

उर्दू गज़ल को आसान और आम बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंचाने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया। उनकी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गज़लों का इस्तेमाल जुनून, मसान, ज़ीरो और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में किया गया है। हमारी अधूरी कहानी के टाइटल ट्रैक की शुरुआत उनकी बेहद खूबसूरत गज़ल की पंक्तियों से शुरू होती है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे चेहरे को पड़ जाएगा।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे हमारी अधूरी कहानी फिल्म से ये गाना, रश्मि विराग के बोल, जीत गांगुली का संगीत। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम हैं। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करोगी तो शायद तुम हमें माफ कर सको।
1: जिन्होंने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को अपने उत्कृष्ट अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, वो हैं आज के फनकार पृथ्वीराज कपूर।

0: सन 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम में अकबर के किरदार को कालजयी बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह हैं। रोबीले शहंशाह का मुगले आजम फिल्म का ये संवाद भला किसे नहीं याद होगा।
1: सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दे।
2: मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा।
1: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
2: कनीज तो कब की मर चुकी है।

पंजाब के लायलपुर में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें रंगमंच का चस्का पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गया था। 18 बरस में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इम्पीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता

1968 की एसएस वासन की फिल्म तीन बहुरानियां पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती हैं। फिल्म तीन बहुरानियां में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर।

0: मुगल-ए-आज़म में इस कलाकार ने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखें ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है।
1: क्या ज़ुल्लैला ही बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए?
2: ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है।
1: बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया।
2: शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है।
1: और सलीम अपनी मोहब्बत से।
2: शेखू शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।
1: इसका फैसला जंग करेगी।
2: सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी।

रंगमंच पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार था, इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद की ही थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवार, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया।

0: कपूर खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आईं। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर।
1: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक

सौ रुपहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को वे अलविदा कह गए।

बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को वे अलविदा कह गए।

0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोरदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: इंद्र जी, स्वागत है आपका। अरे
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से। जी,
0: वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे। जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कंबाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो
1: जी
0: आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं,
0: जी,
1: हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा
1: जी
0: लगता है
1: जी
0: उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते?

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुँचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ।

0: प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके मदद करना चाहिए, करते हैं क्या?
1: जी
0: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: happen.
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
2: मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
2: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
1: अरे
2: आपसे तीसरी बार बात हो रही है।
1: क्या बात है।
2: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसाय गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
1: हाँ।
2: और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
1: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
2: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उससे मैं क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
1: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
2: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
1: अच्छा,
2: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
1: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
2: बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा।
1: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
2: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।

0: जी, तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि
1: क्या
0: जब
1: करें
0: हमारे,
1: दीदी, देखो क्या
0: हाँ,
1: करें
0: राजस्थान
1: दीदी,
0: में जब
1: मैं
0: आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है फिर।
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस वो रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर इधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बस वही बात है।
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी
1: बिल्कुल
0: के, इसमें अपना ध्यान रखिएगा
1: बिल्कुल
0: स्वास्थ्य का और
1: बिल्कुल
0: सब
1: दीदी
0: चीजों
1: बिल्कुल।
0: का।
1: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायांकित प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को ये वापिस आता है 5 बजे रिपीट,
0: हाँ
1: तो मैं
0: हाँ
1: उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं 2 बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं
0: हाँ
1: सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापिस से यूट्यूब पे जाकर कहीं ना कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छाया गीत।
1: छायागीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती हैं
0: जी
1: और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं, और आपके
0: हाँ
1: समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: दीदी, आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हमजोली फिल्म से है, तो
0: हम जो,
1: आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है।
0: चलिए
1: बिल्कुल
0: सुनते हैं
1: बिल्कुल
0: आपकी पसंद का ये गीत।
2: ढल

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है यहाँ भी। मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी जुड़े हुए हैं मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रंजा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है। नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते हैं ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने। और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं, क्यों?
1: जी
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ हाँ, दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ, खुराक में ही है।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम कुएं और इससे।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी, जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना

0: दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
1: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
0: हाँ खुराक में ही है, यही कहा आपने।
1: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
0: जी
1: तो क्या सिलते हैं आप?
0: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और पीसते हैं।
1: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा,
0: बड़ा बड़े
1: उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
0: जी जी।
1: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
0: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
1: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
0: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ता।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का बहुत बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरे के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं, 10 बजे शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है टाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बनकर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नीमे श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े।

0: हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुनकर ही सीखा, चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं। उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
0: जी।
1: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
0: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
1: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
1: चलिए, अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
0: जी जी मैडम,
1: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
0: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
1: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
0: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
1: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिड़किया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के पंकज सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू, ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक?

0: क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं CRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम में भी

0: मौसम ठीक है, अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
1: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों?
0: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनमर्ग में, अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है, उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
0: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में, जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
1: अच्छा, एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है?
0: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है, ये
1: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
0: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
1: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
0: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
1: चलिए, तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
0: हमें सुनाए गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छलिया लगता है।
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002466228602888 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022287022888 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज अपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए प्रोग्राम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: आज के इस प्रोग्राम रंग तरंग का पहला गीत।

0: ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से, मन्ना डे की आवाज में साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक। तन्हा दिल एल्बम का नाम है, शान की आवाज में ये गीत।

0: अशोक खोसला की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से। अशोक खोसला की गजल्स की एल्बम से ये गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल्बम से। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है।

सोनू निगम को आप सुन रहे थे जान एल्बम से, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है। रंग

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए अब आपको सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1295वां भाग।

0: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
0: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
1: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया।
0: गांव ढाणी, कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत।
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओ, संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
0: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
1: जी, ये बात तो है।
0: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
0: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, वे खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
0: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,

0: को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
1: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
1: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
1: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
1: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
1: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
1: जी,
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
1: जी,
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी, वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी,
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
0: जी,
1: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आ

0: खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
1: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
0: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
1: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी, हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहाँ से
1: अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा। हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना। ओके। पीछे ले। हाँ, कार्ड अटैक पहला। शॉट ले। लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार

0: भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में
3: लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
4: जी, हम तैयार हैं।
3: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
3: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह नंबर वन और यह नंबर टू।
5: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
3: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
4: जी साहब।
3: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
4: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
3: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालूबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
6: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यंकन

0: मयंक कुमार और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1295वां भाग। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए वापस चलें विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
4: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
4: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
5: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
4: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
6: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: आपके जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: बालोतरा में कल शाम हुए एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पचपदरा क्षेत्र के भांडियावास में हुई, जहां एक कार का टायर फटने से वह बेकाबू होकर पलट गई। इससे कार सवार तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उधर कोटा रेलमंडल के दराकी नाल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से रेलवे के दो इंजीनियरों की मृत्यु हो गई। उदयपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से दो श्रमिकों की मौत हो गई। पाली जिले में देर रात ट्रेलर की टक्कर से आरटीओ विभाग में कार्यरत गार्ड की मृत्यु हो गई। दुर्घटना जॉर्डन टोल प्लाजा के पास हुई, जहां वे आरटीओ टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर में भी आयुष विभाग और पतंजलि योग समिति की ओर से योगासन कार्यक्रम रखा गया। इसके जरिए लोगों को योग से होने वाले फायदों की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल FM 103.2 MHz पर। आइए वापस चलें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

बालोतरा में कल शाम हुए एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पचपदरा क्षेत्र के भांडियावास में हुई, जहां एक कार का टायर फटने से वह बेकाबू होकर पलट गई। इससे कार सवार तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उधर कोटा रेल मंडल के दराकी नाक

किस्मत फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इसे लिखा, OP नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स कौन सी फिल्म से है, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के मैसेजेस देख के कि आप गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं, और संगीत अगर ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं

सराहने लगती है। प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं। ये जुल्फ, ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आंखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफर का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफर का इंतजार खत्म हुआ और हम सफर में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है। तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ है या जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीज़ों का शुक्रिया करें ज़िंदगी में, हर रोज़, हर सुबह सबसे पहली चीज़। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीज़ों का और गिनते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है ऐसा कहूंगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है श्रृंगार रस में सरोवार है और बहुत सारी शब्द जो इनको नज़र आ रहे हैं, जुल्फ, निगाह, काजल, कजरा, महक, बिंदिया, पायल, चांदनी, वादा, इशारा, ख्याल, धड़कन, दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत ज़रूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाज़ार की बात की गई थी, है ना। मीना बाज़ार, जौहरी बाज़ार, इस तरह के बाज़ार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाज़ार की बात की गई थी, है ना। मीना बाज़ार, जौहरी बाज़ार, इस तरह के बाज़ार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत हो चाहे 100 चीज़ों की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ारों का जो चलन है या बाज़ारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाज़ार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाज़ार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतज़ार है। आप मैसेजेस भेजिए तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, जयदेव का संगीत था, और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे।

ये चीजें खरीदने का भी मजा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रेम पर्वत से ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ और आपके इन दो जवाबों का इंतजार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है और साथ ही साथ बाजारों के नाम और वहां पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है। और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घुमा हुआ है मैंने जौहरी बाजार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे। और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है। और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती, और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं। फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए, जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा, आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाज़ार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफ़ी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफ़ी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। और ऐतिहासिक छत्ता बाज़ार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाज़ार है वहाँ पर, जहाँ पर ना घूमें तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफ़ी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहाँ से दुपट्टे खरीदे हैं, और वहाँ पर लकड़ी के भी काफ़ी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफ़ी पहले घूमी हूँ तो काफ़ी कुछ लिया है वहाँ से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के, और बहुत सी दूसरी चीज़ें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्चक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मज़ा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाज़ार जो कि रात भर खुला रहता है और वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकूला में भी हाट बाज़ार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए, जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए, और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुँच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाज़ारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाजार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने, और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाज़ार अजमेर के डिगी बाज़ार, नाला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, नया बाज़ार और

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नज़दीक है जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट और ख़रीदारी का मज़ा तो बाज़ार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाज़ार लगता है जहाँ मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफ़ी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर ज़िले में बड़ा बाज़ार है जहाँ हस्तशिल्प, अच्छी डिज़ाइन की मोजड़ियाँ, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं, दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहाँ से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहाँ के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाज़ार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाज़ार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूँ तो। और यहाँ पर शादी के काफ़ी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफ़ी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है जहाँ पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव जो कि पूरी ज़िले में है, वहाँ पर भी काफ़ी प्रसिद्ध रंगीन छतरियाँ, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीज़ें हैं वो मिलती है, कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाज़ारों की बात की जाए तो भिंडी बाज़ार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया हमारे श्रोता लिखे हैं कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी सारे एंटीक्स यहाँ पर मिलते हैं और काफ़ी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाज़ार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाज़ार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज़ यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाज़ारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

गोरखपुर में हिंदी बाजार माया बाजार है, लेकिन सिंगार के सामान, कपड़े और आभूषण हिंदी बाजार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाजार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या काम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

0: No normal monsoon rainfall in the country and above normal heat wave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 meter at under 20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है।
1: के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे

भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से

0: भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं।

0: कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधान

0: मंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: के अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म प्यासा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते? सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक उनकी कटिंग करते हैं, फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा।
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी, मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज होनी आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी, सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना, वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी, थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपकी
1: मैं मेरे
0: पसंद
1: का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या
0: मुझे
1: करती
0: भी
1: हैं?
0: बहुत, मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
1: जी
0: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके
1: जी
0: बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ
1: बहुत अच्छी बात
0: और
1: है।
0: घर का सारा काम भी करती हूँ।
1: देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
0: हाँ बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
1: तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगी?
0: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और
1: जी
0: स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही। तो मैंने
1: सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग का पता लगा लेती हैं।
0: हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
1: और जो रोगी होते हैं ना ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
0: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं
0: हाँ
1: सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
0: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
1: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या?
0: नहीं दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
1: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
0: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
1: अच्छा।
0: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
1: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
0: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
1: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
0: नहीं मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की वाली है।
1: प्रेरणा जी आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
0: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है तो यादों की बारात का चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
1: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी,
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के अभी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
1: मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते हैं, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती, आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते हैं मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको
1: हाँ
0: सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ। जी
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं।
1: मैं
0: क्या करती हैं आप?
1: हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो बोरमाई।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन हैं?
1: एक बेटा दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी।
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: ओह जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधकार।

0: गाने का भूल है, रोते रोते हंसना।
1: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
0: जी
1: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो
0: अच्छा।
1: उन्हें क्लियर करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही
1: जी।
0: हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी। हाउस
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: वाइफ मैम
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं। और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी। हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी, दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी, वो
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: आरओ का प्लांट पे ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े, तो
0: जी।
1: बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक,
0: हाँ।
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ। सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है, और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा। जी,
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी देर, लेट जाती हूँ बस।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहां से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है,
0: अच्छा
1: साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी।
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम
1: हेलो
0: कौन सा है?
1: सहेली।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ, मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी।
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी,
1: हाँ
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी,
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है,
1: जी
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैम, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने, और मुझे बताइए कि

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार
1: जी
0: की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने
1: जी
0: कभी किशोर कुमार का जो वहां पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी मैं स्थान पर गई हूँ,
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ मैं जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं,
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है,
1: जी जी
0: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा
1: जी
0: रही हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाल दीवाना,
0: रफी साहब
1: रफी
0: का गाया
1: साहब।
0: हुआ।
1: जी।
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02240024662, 02228670 2 8

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का। वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा पर दिल का

और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य यह था इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थपरता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाती।

की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था। कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं। और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा,

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था। और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

0: उड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया, और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।
1: बहुत

0: अब आए कदम चूम लूं
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गाँव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आई। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: की खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी

0: साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कपिल सुरेलिया है। और साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर भी बात करेंगे। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे ही सही।
1: बिल्कुल दिवस 1/6/2026 के बारे में हम बात करेंगे। वहीं चीन
0: लेकिन अभी वर्तमान में जो मौसम चल रहा है वो भी बहुत सही नहीं चल रहा है। गर्मी किस कदर तो

0: करने का संकल्प लेते हैं। अब सुनते हैं चिराग चोतमल मीणा की बातचीत।
1: गुड इवनिंग मेरे प्यारे युवा साथियों, मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त कपिल सुरेलिया। और आज साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी युवा पीढ़ी के लिए देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है तंबाकू से राहत कैसे पाएं। साथियों, हम देखते हैं वर्तमान में कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो तंबाकू ग्रस्त देखने को हमें मिलती है। कहीं पर भी कॉलेज हो या फिर कहीं भी संस्थाएँ हों, वहाँ पर हम देखते रहते हैं कि जो युवा हैं वो इन तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं। तो आज हम इसी के बीच में आज हम जिनसे चर्चा करने वाले हैं, आइए जानते हैं उनसे उनका परिचय।
2: मेरा नाम है छोतमल मीणा, जलावाड़ के पास असनावर के पास गालिया कुंड का रहने वाला हूँ।
1: तो छोतमल जी, आप हमारे साथियों को ये बताइए कि जो वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो तंबाकू से ग्रस्त है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: तंबाकू बहुत हानिकारक चीज़ है, हमारी जान का खतरा भी हो सकता है। तंबाकू से बहुत खतरनाक रोग हो सकता है ये, जो जानलेवा हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर हुआ। जैसे कि वर्तमान पीढ़ी में हम देख सकते हैं कि युवा किस तरह से नशे का आदि हो रहे हैं। साथियों, वर्तमान में युवाओं के बीच नशीले पदार्थों का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, जो कि बहुत हानिकारक है, जिससे मृत्यु तक हो सकती है। हम देखते हैं कि युवा किस तरह से ड्रग्स के आदि हो रहे हैं, जिससे न कि सिर्फ उनका बल्कि उनके माता पिता के ऊपर भी आदि प्रभाव पड़ते हैं। हम सभी युवाओं को यह समझना चाहिए कि तंबाकू कितना हानिकारक है और इससे दूर रहना चाहिए। इस तंबाकू से जान की हानि हो सकती है। साथ में युवाओं

0: आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नशेली पदार्थों को न छुएंगे, न हाथ लगाएंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे देश को विकास में हम सहायता करेंगे ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, उन्नत हो सके, विकसित हो सके और हम इसके में योगदान दे सकें।
1: जी कपिल जी, ये तो आपने सही कहा कि हम तंबाकू जैसे पदार्थों से दूर रहेंगे तभी हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी।
2: मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
9: साथियों, अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर। साथियों, आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। इनकी प्रतितिथि हर साल 29 मई को मनाई जाती है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गाँव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इन्हें किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और प्रखर किसान नेता थे जिन्होंने 28 जुलाई 1979 को से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ग्रामीण भारत और किसानों के त्याग और उत्थान में समर्पित कर दिया। चौधरी चरण सिंह जी के किसानों के अधिकारों की सशक्त वकालत की और देश के भूमि सुधारों जैसे कि जमींदारों, जमा का उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी थी। किसानों और समाज के प्रति इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जो निधन है वो आज के दिन 29 मई 1987 को हुआ था। इस दिन देश भर में और विशेषकर उत्तर प्रदेश और अन्य कृषि बहुल क्षेत्रों में इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो आइए साथियों, हम सभी मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर हम भी इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: साथियों की।
1: साथियों, तंबाकू का सेवन विश्व स्तर पर रोके जा सकने वाले मौतों का सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, हृदय रोग और सांस संबंधी कई गंभीर बीमारियां होती है। दुनिया भर में तंबाकू के सेवन से हर साल 80 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है। इस दिवस का लक्ष्य इस आंकड़े को कम करना है और लोगों के तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है।
0: खेती और उत्पादन न केवल नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि स्थिति को भी कमजोर करते हैं। इस दिवस 1987 में की गई थी। एक ऐसा जो धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। इसका बीड़ी और गुटखा पीने आदि के रूप में किया जाता है। कपिल, आजकल हम देखते हैं ना कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी, जो यंगस्टर हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस तंबाकू के सेवन में फंस जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है तंबाकू का सेवन करते हैं। इससे कि उनके हृदय रोग हो जाता है, फेफड़े सड़ जाते हैं, हम आए दिन देखते रहते हैं। तो खासकर युवा भी हमारा ये अनुरोध है कि तंबाकू सेवन से एक अच्छी दिनचर्या की शुरुआत।
1: जी बिल्कुल सही कहा ये तो आपने बिल्कुल, कि वर्तमान में हम देखें तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो तंबाकू की या फिर ये कहें कि ड्रग्स की इत्यादि की आदि होती जा रही है। खास तौर पे हम संस्थाओं, कॉलेजों में भी देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। तो हमें इन चीज़ों को सबसे रोकना चाहिए। हम खुद स्वयं जिम्मेदार बनेंगे तभी हम दूसरों को रोक पाएंगे। इसलिए आज आइए हम सभी युवा ये प्रण करते हैं कि हम तंबाकू से दूर रहेंगे और जो इनके लती है उन्हें छुड़ाने में भी उनकी मदद करेंगे, साथ ही आगे बढ़ेंगे, हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे।
0: वहीं निकोटिन नामक हानिकारक जो शरीर में कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है, कैंसर, हृदय, श्वसन तंत्र की समस्याएं और दांतों का खराब होना। साथियों, तंबाकू का सेवन नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हानिकारक होता है। जो लोग तंबाकू नहीं लेते वे भी परोक्ष रूप से स्मोकिंग का शिकार के चलते सेवन पर रोक लग गई है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हम तो नहीं ले रहे हैं लेकिन हमारे पास वाला व्यक्ति अगर सिगरेट का, अगर किसी चीज़ का सेवन कर रहा है तो उसका जो धुआं निकलता है उससे हम स्वयं भी प्रभावित होते हैं और हमारे साथ साथ जो बच्चे रहते हैं उनके ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: तो छोड़ने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और विकल्पों का दोस्तों के साथ, तो इन से बचें। जो मुंह में सौंफ, लौंग, इलायची की एक निश्चित तारीख तय करें और परिवार या दोस्तों को इसके बारे में बताएं ताकि आप जवाबदेह बन सके और तंबाकू सेवन से बच सके। और खूब पानी पिएं और हरी सब्जियां और साबुत अनाज का अधिक सेवन करें।
1: तो साथियों, आने वाले विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इतना ही कहना चाहेंगे कि आपसे कि जिंदगी बहुत कीमती है और इसे यूं ऐसे ही नहीं उड़ाना चाहिए। हमें बहुत ही सोच समझ के जीना चाहिए, आज़ाद रहकर जीना चाहिए, ना कि ऐसे लतों में जैसे कि ड्रग्स, तंबाकू, इनमें जाकर हमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए। हमें स्वयं को अच्छे तरीके से रहना चाहिए।
0: तो साथियों, आज एक छोटा सा कदम उठाइए, तंबाकू को ना कहिए और अपने स्वास्थ्य को हाँ कहिए। या ये बदलाव की शुरुआत आप

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: विश्व

0: 17 मिलियन डॉलर का है और इसे 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
1: वहीं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र उन दो भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित करेगा जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र ध्वज के तहत सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। भारतीय सेना की आधिकारिक मेजर अभिलाषा अभियानों के दौरान लैंगिक समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
0: हाल ही में सिक्किम राज्य पुलिस को भारत के राष्ट्रीय का त्रिप्रष्टिक पुलिस कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह देश में पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।
1: आइए साथियों, अब आपको ले चलते हैं जानकारी की तरफ। साथियों, हमारे देश में भारत सरकार हमारे लिए बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए चला रखी हैं, तो उन्हीं योजनाओं में से एक योजना भारत सरकार द्वारा हमारे लिए चला रखी है, वह योजना है आयुष्मान भारत योजना। साथियों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य से कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिसके तहत प्रत्येक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलता है। यानी कि साथियों, आयुष्मान भारत योजना में जो भी गरीब लोग हैं या फिर कमजोर वर्ग के जो लोग रहते हैं, जो अपना इलाज खुद नहीं करवा सकते या फिर जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे में आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मुक्त किया जा सकता है। वहीं सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है। वहीं सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के 2011 के डेटा के आधार पर परिवारों को लाभ मिलता है।
0: इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, चिकित्सा उपचार, परामर्श, दवाएं, ICU और कमरे का खर्च, ऑपरेशन और सर्जरी जैसे हाई सर्जरी, कैंसर, डिपचार आदि सर्जरी से पहले के बाद और 3 से 15 दिन के टेस्ट व दवाएं निःशुल्क उपलब्ध होती है। साथियों, आप आधिकारिक आयुष्मान सेवा पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इसे मोनरल नंबर

0: यह देश में पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।
1: आइए साथियों, अब आपको ले चलते हैं जानकारी की तरफ। साथियों, हमारे देश में भारत सरकार हमारे लिए बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए चला रखी हैं। तो उन्हीं योजनाओं में से एक योजना भारत सरकार द्वारा हमारे लिए चला रखी है, वह योजना है आयुष्मान भारत योजना। साथियों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य से कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिसके तहत प्रत्येक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलता है। यानी कि साथियों, आयुष्मान भारत योजना में जो भी गरीब लोग हैं या फिर कमजोर वर्ग के जो लोग रहते हैं, जो अपना इलाज खुद नहीं करवा सकते या फिर जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे में आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मुक्त किया जा सकता है। वहीं सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है। वहीं सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के 2011 के डेटा के आधार पर परिवारों को लाभ मिलता है।
0: इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, चिकित्सा उपचार, परामर्श, दवाएं, ICU और कमरे का खर्च, ऑपरेशन और सर्जरी जैसे हाई सर्जरी, कैंसर, डिपचार आदि सर्जरी से पहले के बाद और 3 से 15 दिन के टेस्ट व दवाएं निःशुल्क उपलब्ध होती है। साथियों, आप आधिकारिक आयुष्मान सेवा पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इसे

किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल आप सुनेंगे शाम 7 बजे। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल आप सुनेंगे शाम 7 बजे। चर्चा होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। भेंटवार्ता में आप सुनेंगे खाद्यान्न प्रसंस्करण एवं इसके लाभ। भगवान सिंह मीणा कृषि पर्यवेक्षक बांसखेड़ी से मुकुट बिहारी मीणा की बातचीत। जानकारी की बातों में आप जानेंगे राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 एक रिपोर्ट।

आंखें की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय

0: इस चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के झोंके।
1: ऐसे में बच्चों को बाहर जाने से कोई कहाँ तक रोके।
0: मम्मा सर दर्द।
2: अगर बाहर से आने पर बच्चों में तेज सर दर्द, बेहोशी, अधिक पसीना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सांस या धड़कन तेज होना, उल्टी या बुखार जैसे लक्षण नजर आए तो ये लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत बच्चों को छांव में लाएं, कपड़ों को ढीला करें, पंखे की हवा तेज करें, बच्चे को ठंडा पानी पिलाएं और उल्टी करवट लेटाएं। कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं।
3: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
4: आइए अब सुनते हैं जुर्म फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम का गाया ये गीत। इस गीत को लिखा है इंदीवर ने और संगीत राजेश रोशन का है।

जुर्म फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म से लता मंगेशकर और कुमार सानू का गाया ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद।

जुर्म फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म से लता मंगेशकर और कुमार सानू का गाया ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत जतिन ललित का है।

0: अनुराधा पौडवाल के गाए आशिकी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें। जिगर के
1: पास पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर
2: सूर्य घर। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। शाम के 6:30 अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

ने कहा कि इस मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इन याचिकाओं में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुनर्परीक्षा उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। डीडी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

भाग लिया। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। राजस्थान में राज्यसभा के 3 सदस्यों का निर्वाचन होना है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान होने की स्थिति में 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सभी जिलों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। श्री गहलोत आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं। इनमें से 96% पेंशन धारकों का सत्यापन हो चुका है। बैठक में विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय

0: और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। जैसलमेर के इकोसिस्टम का गौरव और राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण में जिले को खास उपलब्धि हासिल हुई है। आधुनिक तकनीक की मदद से गोडावन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिले का सुदासरी गोडावन संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा रामदेवरा में भी गोडावन का आधुनिक प्रजनन केंद्र चलाया जा रहा है, जिसे इनकी संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की

0: क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: पीएम सूर्य घर योजना रा तहत देश माए हाल ताई 40 लाख मकाना रे छत माथे सूरज री रोशनी उ बिजली बनावण री मशीन लगाती रीची है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। वे कहयो के आ योजना जनता ने बिजली रा ग्राहक री बजाय बिजली पैदा करण वाला बना रही है। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव री प्रक्रिया 1 जून न शुरू भेला। प्रदेश हुई राज्यसभा रा 3 सदस्यां रो चुनाव करयो जावणो है। इसारू नाम पाना 8 जून ताई दाखिल करया जा सकेला। चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो के दाखिल करीचिया नाम पाना री जांच 9 जून न करी जावेला। पर्चा 11 जून ताई पाछा लिया जा सकेला। जरूरत पड़िया 18 जून ने सवारे 9 सिंजा 4 बजे ताई वोट पड़ेला और वही दिन सिंजा 5 बजे वोटां री गिनती करी जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए पचपदरा रिफाइनरी रा कामारी प्रगति रो जायजो लीनो। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रा आला अहलकारा सागे भी मीटिंग माए कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो के 1 जून कमिशनिंग रा काम शुरू कर दिया चावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। प्रदेश माए पेंशन लेवन वाला ज्या लोगां रो हाल ताई सत्यापन नहीं करायो जा सक्यो है, वारो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत आज जयपुर माए न्यारी न्यारी योजनावां रा काम रो जायजो लेवन सारू अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए ए हुकम दीना। वे कहयो के राज्य माए करीब 89 लाख लोगां ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जा मायू 96% रो सत्यापन कर लियो चियो है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA री टीमा आज अजमेर और नीमराना हलका माए कुछ थोड़ा छापा मारिया। NIA री न्यारी न्यारी टीमा अजमेर शहर और नीमराना रा कुछ हलका माए शंका वाली थोड़ा कागजात इलेक्ट्रॉनिक और दूजी सामग्री री जांच कीनी और जरूरी पूछताछ करी जी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 रा तहत राज्य रा न्यारा न्यारा जिला माए पानी और आबो हवा ने बचावण सारू मोटा पैमाना माथे जाग जगावण रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर के नींदड़ माए पानी बचावण रा कामा रा तहत श्रमदान कीनो। इस मौके वे वन विभाग री ओर इको ट्रेल ट्रैक रो उद्घाटन कीनो। कार्यक्रम माए वन मंत्री संजय शर्मा ही मौजूद हा। सवाई माधोपुर जिला री अमरगढ़ ग्राम पंचायत माए कलश यात्रा पीपल पूजन और पौधारोपण सागे परिंदा सारू परिंडा बांधी जिया। जैसलमेर जिला री भणियाणा पंचायत समिति माए पीपल पूजन करी जियो और महिलावां मंगल गीतां सागे कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिला रा चिड़ावा हलकारा बिलावड़ी जोहड़ माए श्रमदान कर और पानी बचावण रो संदेश दियो चियो। ई मौके जिला कलेक्टर अरुण गर्ग कहयो के ई अभियान रो मकसद जनता माए पानी और पर्यावरण ने बचावण सारू जाग जगावण सागे वारी भागीदारी बधावणु है।
2: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन ये बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
1: अभियान रा तहत सिरोही माए CSR कार्यशाला राखी ची। इन माए अभियान रा मकसद पानी बचावण जुड़िया काम और जनतारी भागीदारी रे बारा माए विगतवार चर्चा करी ची। चूरू और पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए जल चौपाल साफ सफाई रा अभियान तलावा और जोहड़ा नी साफ सफाई और पानी बचावण रे शपथ दिरावण रा कार्यक्रम राखी चिया। अरब मौसम प्रदेश रा न्यारा न्यारा हल्का माए आंधी बारिश

0: रे कारण पारो थोड़ो उतरणो तपन कम भी है। दोपहरा पाछे कई हल्का माय तेज हवा चालन आंधी आवन और कठे कठे हल्की बारिश रा समाचार है। ई बीचे जैसलमेर और फलौदी समेत कई जिला माय आज तेज तावड़ो पड़ियो। मौसम केंद्र जयपुर आज आंधी बारिश हु जुड़ी हलचल माय बढ़ोतरी भेवन सागे। माय कठे कठे तेज अंधड़ और बिरखा सागे कुछ जगह ओला पड़बा रा आसार जताया है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो के काली राज्य रा घनखर हल्का माय आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है।
1: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले दो तीन दिन विशेष रूप से जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज गर्जन, तेज आंधी, अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी दर्ज की जा सकती है। इसके बारिश के असर से आगामी दो तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: केंद्र सरकार सोशल मीडिया माथा चाल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वहां वीडियो ने गलत बतायो है, जिनमें इटली री प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जुड़िया मनगढ़ंत दावा और ईरान अमेरिका बीच मध्यस्थता रा बारा में टिप्पणियां शामिल है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई रे मुजब डिजिटल रूप बदली जिया वीडियो ने AI बनाई चियो है। PIB री फैक्ट चेक इकाई रे मुजब श्री मोदी एडो कोई बयान नहीं दिनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज संसद भवन परिसर माय संसदीय कार्य मंत्रालय री हिंदी सलाहकार समिति री मीटिंग लीनी। इन दौरान सांसदा, विधायका और आला अहलकारा सागे सरकारी कामकाज माय हिंदी ने असरदार तरीकाओं काम लेवन रबारा माय चर्चा करी ची। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिशन मौसम रातेत मौसम और कोहरारी निगरानी सारू देश री पहली एकीकृत विमानन प्रणाली स्काई कास्ट रो आज नई दिल्ली रा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माथे उद्घाटन किन्नो। ई मौके वे कहियो के ई नुआ सिस्टम रो मकसद हवाई अड्डा माथे मौसम री निगरानी और कोहरा रो सटीक अनुमान लगावण ने और मजबूत बनावणो है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल कहो है कि भारत ने साल 2047 ताई दुनिया री अगाड़ी माली व्यवस्था मनावन रो लक्ष्य नीचला लेवल मत हर नागरिक ने मजबूत करिया बगैर हासिल नहीं करियो जा सके है। वे आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय का न्यू सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। वे ग्राम लेवल माथे जनता ने मजबूत बनावण माथे जोर दिनो। श्री बघेल गांवाई हलका माय लोगां री जिंदगी आसान बनावण सारू हर एक जना ताई सार्वजनिक सेवावां री पूर्ति तय करण बाबत कह्यो। वे कह्यो के गांवा माय हर एक जना ताई सुशासन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावण माय साझा सेवा केंद्र खास भूमिका निभाई है। आखिर माय खास समाचार एक और फेर सुन ले रहो। सुप्रीम कोर्ट देश की सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावन रा हुकम दीना। PM सूर्य घर योजना रा तेत हाल ताई देश रा 40 लाख घरां री छता माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना लगाई ची। प्रदेश माए सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवन वाला रो आवता 15 दिन माय सत्यापन करायो चावेला। और राज्य रा कुछ हल्का माय आंधी बारिश लू और तपन थोड़ो आराम मिलियो। आज और काल घनखर ठोणा आंधी बारिश और ओला पड़बा सारू चेताई चियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।

ઈન નુઆ સિસ્ટમ રો મકસદ હવાઈ અડ્ડા માથે મોસમ રી નિગરાણી અર કોહરા રો સટીક અનુમાન લગાવણને ઓર મજબૂત બનાવણું હે। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल कहो है कि भारत ने साल 2047 ताई दुनिया री अगाड़ी माली व्यवस्था मनावन रो लक्ष्य नीचला लेवल माथे हर नागरिक ने मजबूत करिया बगैर हासिल नहीं करियो जा सके है। वे आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय का न्यू सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। वे ग्राम लेवल माथे जनता ने मजबूत बनावण माथे जोर दिनो। श्री बघेल गांवाई हलका माए लोगा ने जिंदगी आसान बनावण सारू हर एक जना ताई सार्वजनिक सेवा मारी पूर्ति तय करण बाबत कहो। वे कहो कि गांवा माए हर एक जना ताई सुशासन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावण माए साझा सेवा केंद्र खास भूमिका निभाई है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। सुप्रीम कोर्ट देश

0: से। हम स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पेड़ों की कटाई रोककर और जंगल और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक इलाकों को सुधारकर जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। उपशमन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना। अनुकूलन का मतलब है इसके प्रभाव से बचने की तैयारी करना, जैसे कि भोजन, पानी और आपदा प्रबंधन को बेहतर करना, खासकर उन समुदायों के लिए जो इसके जोखिमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नुकसान होना निश्चित है। यह एक डरावनी स्थिति है। अगर वर्तमान गतिविधि जारी रही तो इस सदी में वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकती है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: और किसान भाई बहनों, अपन चर्चा करा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP। किसान भाई बहनों, किसी भी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य जिसे कम मूल्य देर

0: पूनम चंद प्रेमी और सात्या का स्वरा में बहुत ही बढ़िया लोक भजन करसन भाई बहनों आभार अपन ने सुने।
1: ये तेज चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के झोंके,
2: ऐसे में बच्चों को बाहर जाने से कोई कहाँ तक रोके।
1: मम्मा सर दर्द।
3: अगर बाहर से आने पर बच्चों में तेज सर दर्द, बेहोशी, अधिक पसीना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सांस या धड़कन तेज होना, उल्टी या बुखार जैसे लक्षण नजर आए तो ये लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत बच्चों को छांव में लाएं, कपड़ों को ढीला करें, पंखे की हवा तेज करें, बच्चे को ठंडा पानी पिलाएं और उल्टी करवट लेटाएं। कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं।
4: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: खाद्यान्न प्रसंस्करण और इसका लाभ।
3: किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, खाद्यान्न प्रसंस्करण एवं इसके लाभ, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ है भगवान सिंह मीणा, कृषि पर्यवेक्षक बांसकेड़ी मेवातिया। तो सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार किसान साथियों, कसल चौपाल में आज हम चर्चा करेंगे खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, किससे क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है, किससे किया जाता है।
3: तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण क्या है।
4: जी सर, अगर हम खाद्य प्रसंस्करण को अगर सरल शब्दों में कहें तो खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी खाद्य सामग्री को अपन प्रसंस्करण कर और एक मूल्यवर्धक उत्पाद तैयार कर, जैसे कि यदि अपन दूध, दही, पनीर, मट्ठा, घी, फल, सब्जियों से अपन जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, किंडी ऐसे बना करके इससे क्या है कि किसी भी खाद्य सामग्री का अपन 5-10 गुना तक मूल्य बढ़ा सकते हैं।
3: अच्छा, खाद्य प्रसंस्करण के प्रमुख चरण क्या क्या है?
4: जी, खाद्य प्रसंस्करण के प्रमुख चरण इसमें 7-8 चरण होते हैं। जैसे कि अब कच्चे माल में चयन करते समय अपने को ध्यान रखना चाहिए, होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा होता है कि सफाई और धुलाई। जब अपन किसी भी फल फ्रूट का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद अपन को उसकी सफाई करनी रहती है, धुलाई करनी रहती है। इससे क्या रहता है कि इसमें जो धूल मिट्टी, कीटनाशक और भी अशुद्धियां रहती है जो उसको अपन हटा सकते हैं। उसके बाद अपन तीसरा चरण रहता है छटाई और ग्रेडिंग। छटाई और ग्रेडिंग में ध्यान रखना रहता है कि आकार, रंग और गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। जैसे कि आकार ले लो तो अपन 3 साइज के आकार होते हैं, और अगर रंग देखे तो अगर कच्चे का रंग हरा रहता है और पक्के का रंग पीला या लाल रहता है तो आगे चौथा चरण रहता है अपने काटना, पीसना, मिश्रण करना। वो अलग अलग रहता है, जैसे कि आवश्यकता के अनुसार, जैसे कोई फल फ्रूट है तो उसको अलग अलग आकार में अपन काट लेते हैं। अगर कोई जैसे कि कोई ग्रेन्जर टाइप की, जैसे कि धनिया वगैरह है, तो उसको अपन पीस लेते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि किसी चीज को तो अपन पका कर प्रोसेसिंग करते हैं, किसी को उबाल कर प्रोसेसिंग करते हैं, किसी को सुखा कर करते हैं, किसी को फ्रीज करके करते हैं। उसके बाद आता है संरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन अपन साधारणतः नमक और शक्कर के द्वारा करते हैं, साथ साथ अपन रसायन को भी उपयोग कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट नामक एक रसायन आता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आती है अपनी पैकेजिंग। पैकेजिंग अपने जैसे तेलीय पदार्थ में करते हैं, इसमें क्या है कि यह लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। बाद आता है लास्ट में इसके जो चरण है वो भंडारण और वितरण। भंडारण ज्यादातर गोदामों में रखा जाता है और इसका वितरण अपन मार्केट में भी कर सकते हैं या फिर अपने स्तर से भी

0: सेलिंग कर सकते हैं इसको। अगर अपन ये 7-8 चरण अगर फॉलो करते हैं, भोजन सुरक्षित, स्वादिष्ट और लंबे समय तक उपयोग के लिए बनाया जा सकता है।
1: अच्छा सर, हम बातचीत करें तो इसके उद्देश्य क्या क्या है?
0: इसके उद्देश्य है कि एक तो मेन उद्देश्य रहता है इसका भोजन को सुरक्षित रखना। अगर अपन किसी भी खाद्य सामग्री का प्रसंस्करण करते हैं तो इससे क्या है कि अपने भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद आता है इसकी अपने भंडारण की अवधि। अगर अपन किसी भी चीज का अगर खाद्य प्रसंस्करण करते हैं ना, तो उसकी भंडारण की अवधि को भी अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। जैसे अपन आम का अचार डालते हैं, अगर आप देखो अगर आम 5-7 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन अगर उसी का अगर अपना अचार डालें तो 6-12 महीने तक चल जाता है। स्वाद और गुणवत्ता में सुधार होता है, पोषण में सुधार होता है, उपयोग में भी सुविधा होती है। जैसे कि भोजन को जल्दी और आसानी से उपयोग करने और करने योग्य बना देता है, आसानी रहती है। जैसे कि अगर अपन किसी भी चीज का प्रसंस्करण करते हैं तो वो अधिक उसका लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं और अधिक दूरी तक भी अपन पहुंचा सकते हैं उसको मतलब। और उसके बाद आता है इसका किसानों की उपज में भी बढ़ोतरी होती है, जिसमें अतिरिक्त उत्पादन को खराब होने से बचा करके उपयोग में लाया जा सकता है। रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देता है। फिर अगर फूड प्रोसेसिंग उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं तो इसके लिए भी ये अच्छा ऑप्शन है।
1: अच्छा, खाद्यान्न प्रसंस्करण के और क्या क्या लाभ है?
0: देखिए, तो भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, उस भोजन की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है, स्वाद और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, पोषण को संरक्षण मिलता है, भंडारण परिवहन में आसानी होती है, समय और मेहनत की बचत होती है, किसानों को लाभ मिलता है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, खाद्य अपव्यय भी कम होता है। तो ये सारी चीजें अपने को इससे लाभ मिलता है।
1: बात करें हम किसानों के लिए तो खाद्यान्न प्रसंस्करण की और क्या भूमिका है?
0: जैसे कि तो फसल का उचित मूल्य मिलता है। अगर अपन बात करें कच्चे उत्पाद की तुलना में अगर उसमें को प्रसंस्करण करते हैं तो उसमें क्या अपने को मूल्य मिल जाता है। जिसमें कि आप मानो कि अभी धनिया है, अगर धनिया अभी 70-80 रुपए के जी जाता है अपने अगर नॉर्मल साबुत जो धनिया बेस, और अगर उसी को आप प्रसंस्करण करके उसका वो पाउडर बनाकर अगर बेचते हो तो 250-300 रुपए किलो जाता है। तो मतलब उसका क्या छोटी सी प्रोसेस में अपने को 5-10 गुना तक बेनिफिट मिल जाता है। जिसमें भी अपने केरी की बात करें तो केरी 50-60 रुपए के जी आती है, उसको अगर अपने अचार वगैरह बनाए तो उसमें नॉर्मली खर्चा जाता है मान लो 150 रुपए के समथिंग 1 केजी पे खर्चा जाता है। पर अगर उसी चीज को अपन प्रसंस्करण करके बेचेंगे तो 150 रुपए से अपने को वो 400-500 रुपए के जी में जाते मिलेगी। और अभी जैसे दूध है, अगर अपन दूध को अगर नॉर्मली बेचते हैं तो 1 किलो दूध से मतलब 50-60 रुपए के जी का 1 किलो दूध आता है। अगर उसी को अगर अपने प्रसंस्करण करके जैसे पनीर बना के बेचते हैं तो 300-400 रुपए के जी पनीर आता है। अगर घी बना के बेचे तो अभी 8-6 हजार रुपए के जी के हिसाब से ही मिल रहा है। तो मेन तो ये हो गया कि इसके उचित मूल्य मिलता है। उसके बाद दूसरा है फसल खराब होने से बचती है। जैसे कि अपने पास में टमाटर की उत्पादन ज्यादा है साहब, तो अगर बाजार में अगर अपने को मूल्य नहीं मिल रहा है टमाटर, तो अपन क्या उसका घर पे जैम जेली बन जाता है, इसका केचप बन जाता है। अब ये चीजें क्या अभी टमाटर मान लो कि अगर 50 रुपए के जी भी है, अगर आप जैम जेली अगर ये सभी चीजें लेकर आते तो वो 5-6 हजार रुपए के जी के हिसाब से। उसके बाद अतिरिक्त उपज का उपयोग होता है, जिसमें कि अधिक उत्पादन हो गया अपने पास तो वो फसल खराब नहीं जाती है। जैसे अभी मान लो मिर्ची उगा रखी है अपने, अगर मिर्ची का अधिक उत्पादन हो गया अपने को बाजार का सही रेट नहीं मिल पा रहा है, तो अपन क्या घर पे मिर्ची को पीस करके अपन बेच सकते हैं। तो लाभ आय में वृद्धि होती है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। गाँव में छोटे छोटे उद्योग अभी राज्य का वगैरह चल रहे हैं, जिनमें क्या है कि महिलाओं का समूह चलता है, तो वो 8-15 से 20 महिलाएं समूह में काम करके कोई अचार बना रहे हैं, कोई हल्दी का पाउडर बना रहे हैं, कोई मिर्ची का पाउडर बना रहे हैं, और वो अच्छा रोजगार पा रहे हैं। और प्रकृति पर जो निर्भरता रहती है वो भी कम होने लगती है। ये सारी चीजें इसमें खाद्य प्रसंस्करण में भूमिका निभाती
1: है। अच्छा सर, यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि फसल हमारी है, कोई भी चीज हमारी है, उसके अलग अलग उत्पाद बनाकर हम बाजार में अगर उपलब्ध कराते हैं तो हमें काफी फायदा मिलता है। जैसे कि कोई आंवला है तो आंवले की कीड़ी बना के, उसका अचार बना के, उसकी सुपारी बना के उसको हम बाजार में लाते हैं तो हमें पैसा भी मिलता है और वो चीज भी हमारी खराब नहीं होती।
0: अगर अपने पास अधिक उत्पादन हो रहा है किसी भी चीज का, और अगर अपने को मार्केट की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो अपन घर पे हर एक चीज का प्रसंस्करण कर सकते हैं। जो भी अपन घर का उत्पादन करते हैं, हर एक चीज का प्रसंस्करण किसी न किसी उत्पाद में हो ही जाता है मतलब।
1: अच्छा, हम बात करें खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी और क्या क्या चुनौतियां हैं और इसके रोजगार के अवसर क्या क्या है?
0: जी, इसमें एक तो क्या है कि जैसे भंडारण की कमी रहती है अपने पास, जैसे अभी गांव में है तो अपने पास कोई इतना संसाधन नहीं होता, जैसे कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, इनकी कमी होती है। तो इसमें भी क्या है, थोड़ा युवा थोड़ा पिछड़ जाता है कि यार अपने कहाँ इतना इन्वेस्ट करेंगे बनेंगे। उसके बाद उच्च लागत लगती है। अगर मान लो अगर कोई छोटा सा उद्योग खोलना चाह रहा है तो उसमें मशीनरी की, पैकेजिंग की, बिजली पानी

0: करते हैं, हर एक चीज का प्रसंस्करण किसी न किसी उत्पाद में हो ही जाता है मतलब।
1: अच्छा, हम बात करें खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी और क्या क्या चुनौतियां हैं और इसके रोजगार के अवसर क्या क्या है
0: जी। इसमें एक तो क्या है कि जैसे भंडारण की कमी रहती है अपने पास, जैसे भी गांव में है तो अपने पास कोई इतना संसाधन नहीं होता, जैसे कोल्ड स्टोरेज गोदाम इनकी कमी होती है, तो इसमें भी क्या थोड़ा युवा थोड़ा पिछड़ जाता है कि यार अपने कहाँ इतना इन्वेस्ट करेंगे बनेंगे। उसके बाद उच्च लागत लगती है, अगर मान लो अगर कोई छोटा सा उद्योग खोलना चाह रहा है तो उसमें मशीनरी की, पैकेजिंग की, बिजली पानी सभी की मतलब एक तरह से चुनौती रहती है। छोटे छोटे से उद्योगों के लिए भी अपने को मतलब ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है मशीनों के लिए। उसके बाद रहती है तकनीकी जानकारी की भी बहुत सारी कमी रहती है। मान लो कि अगर कोई भी किसान करना चाह रहा है तो उसको तकनीकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसी के बाद वो आगे काम कर सकते। परिवहन में भी समस्या रहती है क्योंकि गांव से शहर दूर पड़ता है, सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं रहते। और एक इसमें मेन काफी से संबंधित रहता है कि इसमें गुणवत्ता का बहुत बड़ा रोल है। अगर अपन गुणवत्ता बनाए रखेंगे तभी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बिक, प्रशिक्षण की कमी, अगर किसी को अच्छी गाइडेंस नहीं मिले, अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिले तो प्रशिक्षण के अभाव में भी उद्योग नहीं खोल सकते। प्रतिस्पर्धा बढ़ना मतलब जैसे कि अगर कोई ब्रांडेड चीज है, कोई भी चीज है जो ब्रांडेड है और अपने साथ में नए से शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अपने को उस चीज को टक्कर देना पड़ता है, तब जाकर के अपना काम। जैसे मान लो कोई भी मार्केट में चल रहा है, जैसे भी मसाला चल रहा है, मान लो अगर अपन मसाला उत्पादन करके बेच रहे हैं तो अपने उत्पाद को मार्केट में उसके बराबर लाने के लिए अपने को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती, तो इसमें एक प्रतिस्पर्धा का भी बड़ा रोल।
1: अच्छा सर, आप कार्यक्रम के अंत में चलते चलते और क्या सुझाव आप किसान साथियों को देना चाहेंगे?
0: अगर चाहो तो आप छोटे स्केल से मतलब खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट को स्थापित कर सकते हो और इसको

0: 100 तक कर देना पड़ता है, तब जा करके अपना काम। जैसे मान लो कोई भी मार्केट में चल रहा है, जैसे भी मसाला चल रहा है, मान लो अगर अपन मसाला उत्पादन करके बेच रहे हैं, तो अपने उत्पाद को मार्केट में उसके बराबर लाने के लिए अपने को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसमें ये प्रतिस्पर्धा का भी बड़ा रोल।
1: अच्छा सर, आप कार्यक्रम के अंत में चलते चलते और क्या सुझाव आप किसान साथियों को देना चाहेंगे?
0: अगर चाहो तो आप छोटे स्केल से मतलब खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट को स्थापित कर सकते हो और इसको बड़े लेवल तक ले जा सकते हो। इतनी अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है, लोकल प्रोडक्ट की भी डिमांड है। इसकी बात नहीं कि कोई लोकल प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। अगर कोई भी युवा किसान साथी जो चाहता है कि यार मुझे ये काम करना है, तो कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा मुनाफा मिल सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें अगर आप कोई जाता है मान लो 150 रुपए के समथिंग 1 kg पे खर्चा जाता है, पर अगर उसी चीज को अपन प्रसंस्करण करके बेचेंगे तो 150 रुपए से अपने को वो 400 से 500 रुपए केजी में जाते मिलेगी। और अभी जैसे दूध है, अगर अपन दूध को अगर नॉर्मली बेचते हैं तो 1 किलो दूध से मतलब 50 से 60 रुपए केजी का 1 किलो दूध आता है। अगर उसी को अगर अपने प्रसंस्करण करके जैसे पनीर बना के बेचते हैं तो 300 से 400 रुपए केजी पनीर आता है। अगर घी बना के बेचे तो अभी 800 से 1000 रुपए केजी के हिसाब से
1: जरूर उठाओ। आपन बात करा करसान भाई, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 जो 28 और 29 तारीख ने संपन्न हो जे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 28 और 29 मई 2026 ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 आयोजित करो जा रही जो। इस सम्मेलन को मुख्य उद्देश्य किसान भाई बहनों यो च आगामी जो खरीफ फसल सीजन च उनके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर कृषि उत्पादकता, जलवायु अनुकूल खेती और साथ ही डिजिटल कृषि को रोडमेप तैयार करवो च। इस सम्मेलन का जो मुख्य आकर्षण छ और रणनीति जी वही च उद्देश्य प्रमुख विषय और सरकारी विमर्श खरीफ फसलों का जो उत्पादन जो वहाँ आत्मनिर्भरता हासिल करवो, साथ ही जो उन्नत तकनीक है वहाँ का तय अपनावो और साथ ही जो कृषि नवाचार है वहाँ का तय बढ़ावो देवो शामिल जे। इस सम्मेलन में सतत विकास, जलवायु अनुकूल खेती यानी कि खेत बचाओ और साथ ही कृषि अवसंरचना, वित्त पोषण और जोखिम प्रबंधन पर भी विस्तृत चर्चा करी गई जे। और इनका साथ ही गुणवत्तापूर्ण जो बीज वहाँ की उपलब्धता, मौसम पूर्वानुमान, फसल बीमो और प्राकृतिक खेती जैसी जो योजनाओं है वहाँ का तय बढ़ावो देवो और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो कृषि मंत्री जे और साथ ही अधिकारियों की व्यापक भागीदारी शामिल छे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ सीजन 2026 को आयोजन करो गयो छे। यो सम्मेलन खरीफ सीजन की तैयारी, राज्य का साथ समन्वय और किसान केंद्रित नीति क्रियान्वयन का तय नई मजबूती देवा के लिए बनाई गयो छो, राष्ट्रीय मंच बनाई गयो छो। इम दलहन च, तिलहन च, बागवानी च, बीज, प्राकृतिक खेती, जलवायु सहिष्णु खेती, कृषि ऋण, फसल बीमा, पीएम आशा डिजिटल एग्रीकल्चर और राज्य का जो अनुभव छ वहाँ पर विस्तृत चर्चा करी गई छे। तो किसान भाई बहनों आपन कताई जिसा खरीफ जो सीजन छ जरूरत छ समय के अनुसार जे नया नवाचार कृषि में आ रहे वहाँ का तय अपना बाकी जरूरत है, नया तरीका से अपन का तय खेती करनी है, तभी अपन अपनी जो खेती है उम अपनी जो उपज है उनका तय बढ़ा सके चाह, आमदनी बढ़ा सके चाह। बहुत सी आप देख रहे थे जो पढ़े लिखे नए युवक है वह नया तरीका से खेती कर रहे थे और खेती पर ही वो निर्भर कोई ना, खेती के साथ साथ वो बागवानी है वो पर भी वहाँ को जो जारी है वो भी अपना रहे थे, बगीचा अपना रहे छे, पपीता छे, अमरूद छे। तो किसान भाई बनो सहिष्णु खेती, कृषि ऋण, फसल बीमा, पीएम आशा डिजिटल एग्रीकल्चर और राज्य का जो अनुभव छे वहाँ पर विस्तृत चर्चा करी गई छे। तो किसान भाई बनो आपन कताई जिसा खरीफ जो सीजन छे जरूरत छे समय के अनुसार जे नया नवाचार कृषि में आ रहे छे वहाँ कताई अपना बाकी जरूरत छे, नया तरीका से अपन कताई खेती करनी छे, तभी अपन अपनी जो खेती है उम अपनी जो उपज है उनका तय बढ़ा सके चाह, आमदनी बढ़ा सके चाह। बहुत सी आप देख रहे थे जो पढ़े लिखे नए युवक है वह नया तरीका से खेती कर रहे थे और खेती पर ही वो निर्भर कोई ना, खेती के साथ साथ वो बागवानी है वो पर भी वहाँ को जो जारी है वो भी अपना रहे थे, बगीचा अपना रहे थे, पपीता है, अमरूद है। तो किसान भाई बनो एक ही फसल पर अपन कथाएं निर्भर न रहना, फसलों में भी अपन कहता है अलग अलग जो फसल है फसल चक्र अपनाना है, जरूर अपन आगे बढ़ सके चाहें। तो करतान भाई बनो, आपन बात करा आज का जो कृषि उपज मंडी छे झालरापण, तो गेहूं को भाव रियो 2300 से ले 2550, सोयाबीन को भाव रियो 6200 से ले 7461, सरसों बिकी 6800 से ले 7376, धनिया बिकियो 9000 से ले 14000, अलसी को भाव रियो 7800 से ले 8900, वही चना बिकिया 4900 से ले 5660, मेथी को भाव रियो 5700 से ले 6200, चिया सीड को भाव रियो 13000 से ले 18000 रुपये प्रति क्विंटल, वही मसूर को भाव रियो 7000 से ले 8611, कलौंजी को भाव रियो करसन भाई बणो 11000 से ले 16500 रुपया प्रति क्विंटल। तो यो तो छो अपना झालरा पाटन कृषि उपज मंडी को भाव, और आज को अपना कृषक चौपाल कार्यक्रम को वक्त भी हो रहे छो पूरो, तो ले गया और करा राम राम।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: अभी आपने रीता गंगोली की आवाज में ये गजल सुनी। कलाम मुमताज मिर्जा का था, संगीत जयदेव का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: आइए अब सुनते हैं प्रद्युमन शर्मा की आवाज में ये गजल। कलाम राजेश जौहरी का है, संगीत प्रद्युमन शर्मा का।

आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं वी एम आनंद की लिखी झलकी, एक दिन का प्यार।

0: लीजिए, सासू जी आ रही हैं। सास और बहू का टकराव किस घर में नहीं होता, लेकिन हमारा घर, हे भगवान, दोनों को समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब तो ये बोतल ही है।
1: हे भगवान, तुमने ये कौन से जन्म की सजा दी है जो ये मुसीबत हमारे खानदान में आ गई।
0: अरे कौन सी मुसीबत?
1: हाय, अब मैं तुम्हें स्टैंप पेपर पर एफिडेविट में लिख के दूं कि कौन सी मुसीबत? अजी वही मुसीबत जिसे बड़े चाव से बहू बनाकर टोली में डालकर इस घर में लाए थे।
0: क्यों, अब क्या हुआ?
1: अजी वही जो रोज होता है। मैंने जरा सा डांट डपट दिया तो आगे से पूछती है, क्या हुआ माता जी, क्यों नाराज हो रही है, मैंने क्या किया है?
0: अगर तुम नाराज हो रही थी तो बताने में क्या हर्ज है?
1: अजी तुम्हीं ने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है। अजी हमारा भी जमाना था, तुम्हारी माँ मेरे बाल नोच कर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि सासू जी क्यों बाल नोचे आपने, याद है ना तुम्हें?
0: हाँ याद है। अरे तुम्हारे हाथों में बालों का गुच्छा होता था। और ये भी याद है कि मैंने एक दो बार वो बाल देखे तो पता चला कि वो बाल तुम्हारे नहीं, मेरी माता जी के थे।
1: अरे वो तो मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मैं और तुम्हारी माता जी आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि सासू जी के बाल मेरे हाथ में और मेरे बाल सासू जी के हाथ में पहचानना मुश्किल हो जाता था।
0: यानी कि तू ना रहे, मैं ना रहा। अरे माँ कितना भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिल गई। लेकिन अब ये तो बताओ कि बहू ने जो पूछा था कि क्यों डांट रही हो, तो तुमने क्या जवाब दिया?
1: जी मैं पूछती हूँ, सास को क्या हर बार बताना पड़ेगा कि उसने बहू को क्यों डांटा? अरे ये तो सास का मूड है, मन किया तो डांट दिया, लेकिन बहू कौन होती है सास से पूछने वाली? है हाय हाय, 6 महीने हो गए इस बहू को हमारे घर आए हुए, इसने तो सवाल जवाब कर करके मेरा नाक में दम कर दिया। हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले भगवान।
0: अरे इस बहू को ठीक करना है तो सास वाला वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपनाओ और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा।
1: कि क्या, यानी कि मैं बहू को जला दूं?
0: अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। यही तो एक तरीका है जो इस देश की कई सासें अपना रही हैं और बहू से छुटकारा।

0: इसके रेडी, फिर तो मैं 1-2 घंटे पहले ही भागकर मंदिर चली जाऊंगी। मैं उधर मंदिर में आरती उतार रही होंगी और मेरी बहू घर में चल रही होगी।
1: अरे ठहरो तो सही, इसकी मम्मी ठहरो।
0: हाँ, बोलो।
1: बात तो सुनती जाओ। हाँ, हाँ, हर एक को पता है कि तुम दोनों सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हो।
0: हाँ, ये तो सभी को पता है।
1: जब बहू जलेगी तो पुलिस को सबसे पहले तुम पर ही शक हो जाएगा।
0: तो फिर?
1: अरे इसीलिए ये केरोसिन छिड़कने के बाद तुम बहू से प्यार करना शुरू कर दो। में प्यार, दोपहर को प्यार, रात को प्यार, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि तुम बहू से नफरत नहीं, उससे प्यार करती हो। जब बहू जलेगी किसी का तुम पर शक ही नहीं जाएगा।
0: हाँ, क्या तरकीब है।
1: अरे लो, अब बहू जी आ रही है।
2: पिताजी।
1: क्यों बहू, अब क्या हुआ? अरे बेटी, रोती ही जाएगी या कुछ बताएगी भी?
2: आज फिर माता जी ने मुझे बिना बात के डांटना फटकारना शुरू कर दिया। और जब मैंने पूछा कि क्या बात है माता जी, क्यों नाराज हो रही हो, तो कहने लगी, सत्यानाश हो तेरा, बहू होकर तुम्हारी ये हिम्मत, ये मजाल, मुझसे पूछती है क्या बात है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, आप ही तो कुछ नहीं करते।
1: अरे मैं क्या करूं बेटा, तुम तो उससे 6 महीने में ही परेशान हो गई हो। मेरी हालत देख, 25 साल से उसे झेल रहा हूं, ये ढोल ऐसा गले में पड़ा है कि उतरता ही नहीं। और मैं तो ठहरा एक बेबस और बदकिस्मत पति, लेकिन तुम एक बहू होकर सास को ठिकाने नहीं लगा सकती।
2: लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूं?
1: अरे बेटी, तुम ही तो हो जो इस घर में कुछ कर सकती हो।
2: आपका मतलब?
1: अरे ठीक समझ रही हो, बिल्कुल ठीक समझ रही हो।
2: अब नहीं, ये कैसे हो सकता है पिताजी? एक सास तो बहू को जला सकती है, लेकिन बहू सास को कैसे जला सकती है?
1: क्यों नहीं जला सकती, वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है।
2: पिताजी, जैसे घोड़ी पर बैठकर दूल्हा आता है, दुल्हन नहीं आती, जैसे दुल्हन डोली में बैठकर ससुराल जाती है, दूल्हा नहीं, उसी तरह एक सास तो बहू को जला सकती है, लेकिन बहू सास को नहीं जला सकती।
1: लेकिन ये रिवाज बदलना होगा।
2: नहीं नहीं पिताजी, मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है, मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे फांसी हो जाएगी।
1: अरे इसका मतलब है बहू, तुम्हें उस केरोसिन के बारे में अभी तक नहीं पता चला जो मार्केट में आ गया। ये देखो,
2: सास को चलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल, क्या मतलब?
1: ये वो केरोसिन है जो बहू छुपकर पीछे से सास पर उस वक्त छिड़कती है जब सास अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है।
2: अच्छा?
1: उस वक्त सास को ये नहीं पता चलेगा कि किसी ने कुछ छिड़का है।
2: अच्छा?
1: हाँ?
2: तो फिर माचिस कब जलानी पड़ेगी?
1: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ? यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा काम ऑटोमेटिक। पहले कुछ घंटे बाद सास के घुटने कांपने लगेंगे। उसके बाद जब केरोसिन छिड़के हुए 24 घंटे हो जाएंगे तो सास अपने आप जल जाएगी।
2: अच्छा, ओह माय गॉड, फिर तो मैं अपनी फ्रेंड्स के घर किसी पार्टी रखा देती हूँ। मैं 1 घंटा पहले ही भागकर फ्रेंड्स के घर चली जाऊंगी और जिस वक्त मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी अटेंड कर रही होंगी, उस वक्त पूजनीय सासू जी घर में जल रही होंगी।
1: अरे ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
2: क्या हुआ पिताजी?
1: हर एक को पता है कि इस घर में सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं।
2: हाँ, ये तो सभी को पता है।
1: जिस वक्त तुम्हारी सास जलेगी, पुलिस को सबसे पहले शक तुम पर जाएगा।
2: हाँ पिताजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
1: इसलिए केरोसिन छिड़कने के बाद जब तक तुम्हारी सास जल नहीं जाती, उससे प्यार करना शुरू कर दो।
2: प्यार?
1: हाँ, सवेरे प्यार, दोपहर को प्यार, शाम को प्यार।
2: प्यार और सास से? कभी नहीं। और फिर लोग क्या कहेंगे कि एक बहू होकर सास से प्यार करती है?
1: समझा भी करो बहू, असली प्यार नहीं, ऊपर ऊपर का प्यार, दिखावे का प्यार, अरे सिर्फ एक दिन का प्यार।
2: अच्छा ठीक है पिताजी।

0: तो थी माता जी।
1: बेटी तुम्हें थोड़ी देर भी नहीं देखती हूँ तो दिल घबराने लगता है।
0: अब यही हाल मेरा भी है माता जी, जी चाहता है आप हर वक्त मेरे सामने ही खड़ी रहे और मैं आपको निहारती रहूं।
1: बहू तू ठीक तो है ना?
0: जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माता जी।
2: वो अभी इसको केरोसिन का असर नहीं हुआ क्या? इसे अभी चक्कर नहीं आया क्या?
0: क्या, क्या, क्या, क्या कहा माता जी? चक्कर?
1: कुछ नहीं बेटी कुछ नहीं, बैठ जा बैठ जा। चक्कर तो नहीं आ रहे ना?
0: चक्कर मुझे चक्कर क्यों आएंगे?
1: आएंगे बेटी आएंगे, जरूर आएंगे। मेरी बहू को चक्कर जरूर आएंगे, मेरी बहू को नहीं आएंगे तो और किसे आएंगे? 6 महीने हो गए शादी को।
0: 6 महीने शादी को हो गए तो क्या हुआ माता जी?
1: वो
0: अच्छा चलिए छोड़िए माता जी, अब आप बताइए ना, आप तो ठीक है ना?
1: मैं मुझे क्या हुआ है?
0: आपके घुटने तो नहीं कांप रहे?
1: मेरे घुटने? घुटने क्यों कांपेंगे?
0: कांपेंगे माता जी, जरूर कांपेंगे। अब वो आपकी उम्र हो गई है, लाइए माता जी मैं आपके घुटने दबा दूं।
1: नहीं नहीं बहू रहने दो, रहने दो।
0: लाइए ना माता जी, लाइए।
2: अच्छा बहू रानी, तुमने आज पहली बार मेरे घुटने दबाए हैं, बहुत आराम मिल रहा है बहू।
0: मेरा बस चले तो घुटनों की बजाय इसकी गर्दन दबा दो।
2: क्या कहा बेटी?
0: कुछ नहीं माता जी, मैं टांगे दबा रही हूँ।
2: भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, मैं इसे जीने दूंगी तब ना।
0: माता जी आपने कुछ कहा?
1: नहीं नहीं बेटी मैंने तो कुछ नहीं कहा।
2: बहू आज मैं तुम्हें कथा सुनाती हूँ।
0: कथा?
2: जब कोई प्राणी इस संसार से जाने लगता है तो उसके कानों में कथा की आवाज सुनाई देनी चाहिए।
0: ये आप क्या कह रही हैं माता जी? अरे इस बुढ़िया को कहीं पता तो नहीं चल गया किसकी घंटी बजने वाली है?
2: क्या कहा बहू तुमने? कुछ
0: मैं कह रही थी माता जी, चाहे आप बूढ़ी हो गई हैं फिर भी आप अच्छी बनी है, हट्टी कट्टी। आखिरी वक्त आए आपके दुश्मनों का।
2: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, आखिरी वक्त आए मेरे दुश्मनों का।
1: बहू
0: जी
1: एक बात बताओ
0: जी,
1: तुम तो फिल्में देखती हो ना?
0: जी हाँ।
1: अच्छा ये बताओ, हीरो और हीरोइन को कैसे पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो रहा है?
0: जब उनका दिल धक धक करने लगता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें प्यार हो गया है।
1: अच्छा?
0: वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती
1: है। हाथ पकड़ लेती है? हाय मेरा दिल भी तो धक धक कर रहा है।
0: माता जी मेरा भी।
1: बहू मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है? ठहरो जरा बहू, न जाने क्यों मुझे ये सोने का हार तुम्हें देने को मेरा मन उतावला हो रहा है।
0: माता जी
1: ये लो बहू, पहन लो इसे। हाय कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू।
0: ये क्या किया आपने माता जी?
1: क्यों?
0: ये हार आपने मुझे दे दिया? इतना कीमती हार बहू को दे दिया?
1: मुझे खुद पता नहीं बेटी मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है, लगता है शायद
0: शायद क्या माता जी,
1: शायद शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। बहू
0: ये क्या हो गया है आपको, एक सांस होकर बहू से प्यार करने लगी है?
1: हाँ बहू, ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे।
0: माता जी मुझे भी होता जा रहा है।
1: क्या हो रहा है बेटी?
0: लगता है शायद मैं भी आपसे प्यार करने लगी।
1: अच्छा आओ बेटी मेरे गले लग जाओ। बेटी मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हें जलाने के लिए तुम पर केरोसिन छिड़क दिया है। बहू
0: मुझे भी माफ कर दीजिए माता जी, मैंने भी आपको धोखा दिया है, मैंने भी आपको जलाने के लिए आप पर केरोसिन छिड़क दिया है।
1: यानी कि तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें भी केरोसिन दिया है?
0: माता जी वो हम दोनों को बर्बाद करने पर तले हुए हैं।
1: नहीं नहीं बहू मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगी।
0: माता जी मैं भी आपको नहीं देने दूंगी।
1: मैंने फोन कर दिया है उन लोगों को बेटी, अब हमें इस दुनिया में कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम जिएंगे तो एक साथ, हम मरेंगे तो एक साथ। दुनिया की सासों एक हो जाओ, अपनी बहुओं को गले से लगाओ।
0: दुनिया की बहुओं एक हो जाओ, अपनी सासू जी से प्यार बढ़ाओ और अपने ससुर जी से खबरदार हो जाओ।
3: बताइए बताइए क्या बात हुई, कौन बीमार है?
1: मेरे घुटने कांप रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है बेटी?
0: आपके घुटने कांप रहे हैं, यानी आपको केरोसिन का असर हो रहा है।
1: मैं जा रही हूँ बहू, मैं जा रही हूँ, मैं बने नहीं सकती।
0: नहीं नहीं आपको कुछ नहीं होगा माता जी। माता जी मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रही हूँ।
1: नहीं बहू नहीं, डॉक्टर साहब मेरी बहू को बचाइए, मेरी सासू जी को बचाइए।
3: सासू जी को? बताइए आपको क्या तकलीफ?
1: मेरी बहू को बचाइए,
3: मेरी
0: सासू जी को बचाइए।

0: है? कितने किसको जलाया ये बताइए।
1: इंस्पेक्टर साहब मेरा बयान लीजिए।
2: नहीं नहीं,
1: मैं जून का इस्तेमाल करना चाहती
2: हूँ। इंस्पेक्टर साहब, माता जी का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मैंने इन्हें जलाने की कोशिश की है,
1: धोखा दिया, इसे जलाने की कोशिश की है।
3: इंस्पेक्टर साहब, किसी ने किसी को नहीं जलाया। हाँ, इन बोतलों में केरोसिन नहीं, गुलाब जल है। गुलाब जल
1: क्या?
3: सारे घर में प्यार की वर्षा हो रही है, सास और बहू के प्यार की वर्षा।
1: माता जी।

तो ये थी झलकी एक दिन का प्यार। इसके लेखक V.M. आनंद, निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए कूली नंबर वन फिल्म से पूर्णिमा कुमार सानू का गाया ये गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत आनंद मिलन का है।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में, गिरफ्तार फिल्म से। इस गीत को लिखा है इंदिवर और संगीत बप्पी लहरी का है।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

देने वाला पिता। दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

ये गीत आपने सुना बागबान फिल्म से, अमिताभ बच्चन और ऋचा शर्मा की आवाज़ें। गीत लिखा समीर ने और संगीत आदेश श्रीवास्तव का था। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, मोहब्बत ए फिल्म से उदित नारायण, जसपिंदर, ईशान की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है।

0: को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों उनके अनुसार प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉकेट टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: विकसित भारत की तैयारी है अपना।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो हुई जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया, हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को स्वीकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य

सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की

0: इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग हई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए अब सुनते हैं हरिहरन की गई ये गजल।